0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी. मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में.

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहे थे इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, उन्होंने BA MA जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मतलब लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहां पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो। हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आज आया हूँ वॉक टॉक रेडियो। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बिखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका, आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला, थोड़ा लर्निंग की जर्निंग होती है यहाँ पे। और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग की जर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं, पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: दोस्तों मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरे जिंदगी में आपको क्या लगता है अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से पल आपके अचीवमेंट्स के, मैं समझता हूँ देखिए जब हम बचपन में होते हैं तो छोटे होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं इधर से उधर, हमें कुछ पता नहीं होता कि क्योंकि हमें कुछ खोना या पाना है नहीं, ना कोई पैसे लगे पड़े हैं, नो इन्वेस्टमेंट, सो अचीवमेंट्स वहाँ नहीं होती। बट ऑफकोर्स जब आप स्कूल में जब होते हो तो कभी कभी आप रेस जीत जाते हो तो वो आपकी एक पहली अचीवमेंट होती है और आपको कितनी खुशी मिलती है, फिर मार्क्स मिलते हैं, फिर नंबर वन आते हो। मेरी जिंदगी में वो सारे पल नहीं थे कभी, मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आता। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि फर्स्ट आने में इतना क्यों इतराते हो, ये जो जो जो स्कूलों में जो चार्टर कोचिंग क्लासेस के इतने बड़े बड़े फोटो आते हैं कि 10 बड़े जो नंबर 1 to 10 के हमारे हमारे हमारी क्लास के 5 छात्र उसमें मौजूद और वो बड़े स्माइल कर रहे होते हैं कि उनको 95% 98% 98 to 97% मिलते हैं। मेरे को क्लास में 27 नंबर आया था मैं, और अपने भाई को मैंने अमेरिका में लिखा था जो अमेरिका में बैठे हुए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं क्लास में 2700 नंबर आया हूँ, कोई झिझक नहीं थी मेरी, मैंने उसको सक्सेस नहीं माना। जिंदगी में पहली बार मैं एसएससी में फर्स्ट क्लास आया, क्योंकि लोगों ने कहा था कि कॉलेज जाना हो तो एसएससी में मार्क्स होने चाहिए, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी मैं भी पढ़ रहा था, हमने रात रात भर के पहली बार जिंदगी में मैंने रटाफिकेशन कर करके मुझे 60% मार्क्स मिले स्कूल में, मेरी सिस्टर को 70% मार्क्स मिले, मेरी सिस्टर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसको 70% उसको डिस्टिंक्शन बोलते थे। मुझे पहली बार समझ में आया कि डिस्टिंक्शन क्या होता है और फर्स्ट क्लास क्या होता है। मैं जिंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास में आया और मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिला, वो भी मेरी जिंदगी की फर्स्ट अचीवमेंट। अचीवमेंट मैं चाहता था प्लास्टिक इंजीनियर बनूं, किसी कारणवश आज मैं समझता हूं कि भगवान चाहते थे कि मैं आयुष्मान भव कहूं, मुझे एडमिशन नहीं मिली। कानपुर में मैंने अप्लाई किया था, मुझे वो एडमिशन नहीं मिली। फिर मैंने एक्टिंग में स्टेज किया, स्टेज में मैंने पहली बार चलना सीखा, वो भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाकर, और उसके बाद वहां पर जो मुझे याद आता, मुझे किसी ने आके कहा था सर आपको जब अवार्ड मिल रहा था आप प्ले कर रहे थे, मेरी मदर बैठी थी मेरे ऑडिटोरियम में, मेरी फैमिली के साथ आए होंगे मेंडल, बोलता आपकी आपके वहाँ जब तालियां पड़ती थी कोई डायलॉग के ऊपर तो मेरी मां को उसने बताया, उसने दूसरे वाले जो साथ में बैठा था उसको टच करके बोला अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मुझे इतनी हंसी आई ये सुनकर, बट अगेन अच्छा लगा। वो भी शायद मेरी एक एक्टिंग की पहली अचीवमेंट। अगर मैं जिंदगी की पहली अचीवमेंट अपने करियर की कहूँ, उसके बाद भी फिर मैंने FTII किया, पुणे इंस्टीट्यूट में भी मैंने अच्छे मार्क्स तो मेरे को नहीं मिले पर योगा में डिस्टिंक्शन मिला मुझे, वो मुझे काम आता है आज। पर जब मैं निकला तो मुझे निकलने के बाद में बिना किसी से काम मांगे मुझे मेरे बड़े भाई साहब फिल्म बना रहे थे, ऑलरेडी इंसान बना रहे थे, वेद भाई साहब, उनकी भी आत्मा को शांति मिले, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म के दौरान मुझे पहली फिल्म मिल गई खूनी, वो मेरी पहली अचीवमेंट एज ए करियर की थी बिना मांगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई साहब फिल्म बना रहे थे इसलिए मुझे फिल्म मिली, क्योंकि वो फिल्म मुझे मिली मेरे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने मेरा प्ले देखा, उस वक्त मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस किया करता था, और उसके ऊपर उन्होंने कहा मुकेश आई विल मेक गॉड फादर विद यू। आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट एज ए करियर, और वो फिल्म हालांकि अभी तक रिलीज प्रॉपरली नहीं हुई, बेदी जी की डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे 15 फिल्में मिली, उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेस जो मिला वो था महाभारत। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ महाभारत मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट का मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ जब एक बहन जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई, कहा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार। मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही, बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस हंस के दूध पीता है, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दैट वॉज माई अनदर काइंड ऑफ अचीवमेंट। मैं टीवी से मैं फिल्मों से मैं यूट्यूब की तरफ मैंने भीष्म इंटरनेशनल चैनल खोला, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये भी मेरी एक अलग से अचीवमेंट। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर आपकी तो 2 इमेज थी भीष्म और शक्तिमान, ये तीसरी इमेज आ गई है। मैंने कहा कौन सी इमेज आ गई है, बोला मुकेश खन्ना की इमेज आ गई। लोगों को आपके विचार समझने में मिल रहे हैं, आप लोगों को पहचान रहे कि अरे मुकेश खन्ना ये है, तब तक मुझे बच्चा भी कई बार एक बार मुझे कई बच्चों का फैमिली के साथ एक बच्चा मेरे हाथ को बोलता है ए तेरा नाम क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ शक्तिमान मालूम था। तो थर्ड इमेज एज मुकेश खन्ना मुझे भीष्म इंटरनेशनल चैनल ने दी है, एंड आई एम हैप्पी कि मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगेन आई वुड से थैंक गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू भगवान।
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk. सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
3: Hi, मैं हूँ रविंद्र प्रताप सिंह, founder of Dehradun Now Magazine. मैं आज बात कर रहा हूँ Walk Talk Radio के ऊपर. आज मैं बात करने जा रहा हूँ करियर एडवाइस के लिए कि जब हम छोटे थे तो उस समय ये टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी ऐसे नहीं थे, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना कुछ नहीं था, केवल आपका याहू और रेडिफ मेल होते थे. आज के यूथ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अंदर की बात सुनकर जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर सकता है. हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, आप दिखावे पे मत जाओ. जो आपको सही लगता है, जो आपकी फैमिली एजुकेट गाइड करती है, जो आपके टीचर आपको गाइड करते हैं, जो आपको स्कूलिंग के बाद समझ में आता है कि मेरे को फ्यूचर में करना क्या है, आप वो डिसीजन लेके सबसे डिस्कस करके करें. ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आकर देखा देखी में जाके आपने ले लिया है. जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़, अपना एक करियर बना सकते हो, पर आप उस प्लेटफॉर्म पे आप शो क्या करना चाह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही. जो हमारे टाइम पे ना यूट्यूब था, ना कुछ नहीं था, आप फोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप अपने शहर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की एक आवाज़ भी बन सकते हो, मोटिवेट, मतलब आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो कि लोग लाइक बाहर के कुछ लोगों के आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके स्टेट के बारे में पता चले. तो आप आज के टाइम में जहाँ पे आप रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहे उन लोगों की आवाज़ भी बन सकते हो. लाइक हमारी जनरेशन के टाइम पे हम टोटली फादर के ऊपर और रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, फ्रेंड्स की हम सुनते नहीं थे क्योंकि फ्रेंडशिप उतनी होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं वहाँ पे. स्कूल के वो टेंथ नर्सरी के फ्रेंड होते थे तो उनका भी सेम होता था, वो भी फैमिली के प्रेशर में. पर आज का जो यूथ है उसके ऊपर प्रेशर कम है फैमिली का, क्योंकि फैमिली को आज के टाइम में पता है कि हमारा जो बेटा है बेटी है उसको अपने करियर का डिसीजन खुद ही लेना है, हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम उसको समझा सकते हैं. तो आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपको सही लग रहा है, आपको फोकस माइंड आप लेकर आगे चल रहे हो कि मेरे को आगे ये करना है, डिस्कस करके प्रॉपर उसके इफ एंड बट समझें उसके बारे में, तो आप करियर ऐसा चूज करो जिसमें आपको अंदर की पीस भी मिले, ग्रोथ भी मिले और एक नेम भी मिले.
0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life. ये है Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
1: रेडियो, वॉक टॉक रेडियो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। Tune in for a better life. Walk Talk
2: Radio. बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लेट्स फेस इट, ये सच्चाई है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लैंग्वेज ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो प्रोफेशनली आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, रादर देन मेकिंग इट यू नो लाइक मेकिंग इट टू ऑब्वियस दैट यू आर नॉट गुड विद द लैंग्वेज। उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप। वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं एक्टर नियो फर्सवान, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं जिस भूमि से हूं, जिस मिट्टी में पला बड़ा हूं, तो यहां का ऋण तो मैं शायद मतलब जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे बनाने वाले लोग हैं यहां के। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरे पहले डेब्यू सॉन्ग को सपोर्ट किया। यहां की म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ने का यही है कि आप क्वालिटी कंटेंट दो, अच्छे गाने बनाओ, म्यूजिक की आपको टेक्निकल नॉलेज, म्यूजिक हो चाहे सिनेमा की, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी। और प्लस देखो एक चीज़ है, आप जो ऑडियंस को दे रहे हो, लगातार दे रहे जा रहे हो, तो ऑडियंस वही सुनती जाएगी। आप बोल रहे हो कि अगर स्लो सॉन्ग्स नहीं चल रहे उत्तराखंड में, डांस नंबर्स चल रहे हैं, इसका कारण भी हम ही आर्टिस्ट हैं। किसी भी ऑडियंस को जो खिलाएंगे या जो भी चीज़ हम देंगे उनको हम उसी चीज़ की आदत डालेंगे। तो यही है कि हमें अच्छा, अगर हम कंटेंट देंगे आर्टिस्ट को और लोगों को, तो उनको उसी चीज़ की आदत पड़ेगी। तो हम स्लो सॉन्ग भी अगर अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो लोग वो सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। तो यही है, अपने जो है टेक्निकल चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। और सिनेमा, अगर हम सिनेमा में काम कर रहे हैं या म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कर रहे हैं या ऑडियो में काम कर रहे हैं, वीडियो में, कोई भी, ये सिनेमा की कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई और टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गाने उतने मिलियन व्यूज़ नहीं गए। चैता की चैतवाली और कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पर गए हैं। तो ये है कि हमारे जो फोक म्यूज़िक और फोक कल्चर में बहुत पावर है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे मुंबई में लोग मेरे फोक म्यूज़िक की वजह से जानते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वहाँ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, साउथ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, तो मैं यहाँ के कल्चर के जो मेरे ओरिजिनल म्यूज़िक है उसको सुनाता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं, वो लोकल जो रीजनल आवाज़ है, रीजनल म्यूज़िक है, वो सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे कल्चर और हमारी स्टोरीज, हमारे म्यूज़िक में बहुत पावर है, बट उसको सही तरह से दिखाना, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना, वो हमारा कर्तव्य है। और हर इंसान अगर अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाएगा, तो वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करेगी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइस, मेरा नाम है निकिता वर्मा। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे सुन रहे हो वॉक टॉक रेडियो पे। फैशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो बहुत कम फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे कंट्री में। मतलब 5 ईयर्स हो गए जब मैंने शुरू करा था, तभी जो भी अभी बहुत फेमस हो चुके हैं बस वही कर रहे थे। बट अभी वी कैन सी लाइक एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर गर्ल, बॉय, दे आर परस्यूइंग बीइंग फैशन इन्फ्लुएंसर। तो फैशन अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंट्री में, और मॉडर्नाइजेशन आ गया है फैशन इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके के फैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे कोई कैजुअल प्रेफर करता है, कोई स्ट्रीट स्टाइल, कोई क्लासी एंड मिनिमल, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। और फैशन क्या है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो कर रहे हो। कोई अपनी मूड को शो करता है, कैसे कपड़े पहन रहा है उस दिन। कोई स्पोर्टी फील कर रहा है, कोई किसी का मूड ऑफ है तो उसने उतना एफर्ट नहीं डाला है उस दिन, तो आप किसी को देख के बता सकते हो कि आज वो कैसा फील कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फैशन इंडस्ट्री यही है कि आप अपने आप को कैसे शो करते हो, और बीइंग फैशनेबल एक आजकल कैरेक्टर है, और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हो। सो बीइंग फैशनेबल, मैं 5th क्लास तक वहीं पे पढ़ी थी बिहार में, और मेरी मम्मा नेपाल से हैं, तो मेरी मासी नेपाल में रहती थी उस टाइम में। तो मेरी मम्मा को लगा कि यहाँ पे थोड़ी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है व्हेन यू आर गोइंग इनटू टीनेज, तो मम्मा ने मुझे नेपाल में भेज दिया था मासी के पास। तो 5th to 10th स्टैंडर्ड में नेपाल में थी, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली इन 11th क्लास। तो 11th से आज तक मैं दिल्ली में ही हूँ, लाइक इट्स गोइंग टू बी 8 ईयर्स इन दिल्ली। तो 11th 12th में आई वॉज इन बोर्डिंग। बोर्डिंग में उतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिला मुझे, क्योंकि अंदर ही एक दुनिया थी मेरी अलग। तो ये एक्सपोजर मिला कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से, इनफैक्ट थाईलैंड से भी वहाँ पे लोग थे, तो बहुत वो एक्सपोजर था कि अलग अलग जगह के लोग आए थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि उस टाइम इंग्लिश पे काम किया। बिहार से आई थी, नेपाल में भी रही थी, बट हाँ इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लैकिंग। तो बोर्डिंग में रह के, और जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट से थे, दे स्पीक इंग्लिश मोस्टली, तो उनके साथ इंग्लिश बोलते बोलते मेरी इंग्लिश तभी फ्लुएंट हो गई थी, वो एक्सपोजर मिला। फिर भी लाइफ को हैंडल करने का, या मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ उस 10th के बाद ही, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको, ये वो। तो एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो सबने चूज़ किया मेरे लिए कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मैं बहुत अच्छी थी, 10th में 10 CGPA, 12th में 87.2% ऐसा, हमेशा मतलब हमेशा एकेडमिक्स में अच्छा ही करा है मैंने बचपन से, फर्स्ट टॉपर, स्कूल टॉपर ऐसा। तो नोबडी थॉट कि अचानक से बीटेक से फैशन एंड एवरीथिंग। तो जब मैं MT गई बीटेक करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला एक फैशन का, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी उस टाइम अपने बॉडी के ऊपर। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तो मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और जब मैंने अच्छे से अपने ऊपर काम कर लिया, उसके बाद मेरा फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उससे पहले तो मुझे कुछ भी मतलब नहीं था, पढ़ाई, खाना, पढ़ाई ऐसा तो सोचा नहीं था। जब मैंने अपने ऊपर काम किया, उसके बाद फैशन में इंटरेस्ट लेने लगी, और अपने OOTD की पिक्चर्स में पोस्ट करती थी, आउटफिट ऑफ द डे, कॉलेज जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह चेंज करी है, स्कूल, कॉलेजेस, तो उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे। और हाँ, 6,000 जब मेरे फॉलोअर्स थे, तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया था, बिकॉज तब मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था, बार्टर कोलैब था वो एक, बट दे अप्रोच मी, तो आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस अबाउट, ऐसा क्यूरियोसिटी थी। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, उस अपॉर्चुनिटी को। तो वो मेरा फर्स्ट कोलैब था, तो हॉस्टल में मेरे साथ फ्रेंड्स रहती थी, दे यूज़ टू शूट फॉर मी, वो मेरे लिए शूट करती थी तभी, तो कभी फ़ोटो वोटो क्लिक कर दिया, अच्छा अच्छा जब भी पहना। तो वैसे स्टार्ट किया था मैंने फैशन को, फैशन में मेरा इंटरेस्ट था, मेकअप में। जब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया था, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। उससे पहले तो बोर्डिंग में रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, राइट। तो हाँ, जब से मैं कॉलेज में गई, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, OOTD पोस्ट करना शुरू किया, देन
तब मेरे को फैशन में इंटरेस्ट आया, और जब मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो गए, ये कोलैब वगैरह मुझे आ रहे थे, तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करी जो इस फील्ड में हैं। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन आ गया, बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स आ गई। मतलब पे कम करते थे वो, क्योंकि मार्केट डाउन था ऑफकोर्स, बट हाँ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि सारे ब्रांड्स आ चुके थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं कहीं उनको चाहिए होते थे प्रमोशंस। तो और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ भी किया, क्योंकि मेरा कॉलेज रहता था तो मैं कम कॉन्टेंट क्रिएट कर पाती थी। ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट किया, फिर मोनेटाइज हो गया मेरा पेज, मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग पेड कोलैबोरेशन।

0: एनीबॉडी कैन डांस, ये चीज हम सबने सुनी है। शायद सब डांस भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और बेहतर तरीके से डांस करना ये कला सब में नहीं होती। दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उनको डांस करने का बहुत शौक था, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, डांस कॉम्पिटिशन हो, उनका नाम लिस्ट में होगा ये उनको पता होता था। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि बड़े होके एक दिन वो दोनों साथ मिलके एक डांस स्टूडियो खोलेंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी सेम स्कूल में डांस सिखाएंगे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो दो टैलेंटेड, डायनेमिक और वाइब्रेंट लड़के आज हमारे साथ हैं, हर्षित गुप्ता एंड अभिनव भट्टाचार्य, को फाउंडर्स ऑफ वाइब्रेशंस द डांस स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉक टॉक रेडियो में।
1: थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।
2: थैंक यू सो मच गौतम।
0: सबसे पहले इस नाम के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेशंस। ये नाम रखने के पीछे कोई खास रीजन?
1: सो वाइब्रेशंस आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, यू एज अ पर्सन, I as a person, Abhinav as a person, we all have different vibrations. Okay, so vibrations is something, you know, if you send it in a positive way outside, it'll multiply. If you send it in a negative way outside, it'll multiply. So when we were coming back to Dehradun, humne yahi socha tha ki yaar, we've been working on our art since so long and we always wanted to give it back to the city. तो हम अपनी पॉजिटिविटी लेकर जब हम शहर के अंदर जाएंगे तो उसी वाइब्रेशंस को वी वुड वांट टू स्प्रेड इन द एंटायर सिटी। इनफैक्ट अभी तो हम सिटी की बात कर रहे थे, अब तो हम काफी जगह काम करते हैं, तो वी आर स्प्रेडिंग।

0: इट ऑल ओवर। सो और ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस एकदम से आया, इसकी स्टोरी अभिनव भी आपसे शेयर करेगा, बिकॉज वाइब्रेशंस नाम रखने में ना हमें नहीं पता था कि हम इस चीज को इतना आगे लेके जाएंगे। वी हैड अ थॉट कि हाँ ठीक है, हम हमारी पॉजिटिविटी और हमारी ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स आर आर्ट विल टेक अस समवेयर, बट नाउ दैट इट्स ग्रोइंग सो वेल वी आर वेरी हैप्पी दैट वी यू नो वी गॉट स्टक टू दिस नेम कॉल्ड वाइब्रेशंस।
1: Yes, actually, it took quite a lot of time. जब हमने vibrations सोचा नाम, हम लोग I think around 1 week we were just talking on phone or if we were meeting. So हम लोग बस पूछ सोच रहे थे, अच्छा हर्षित तू भी सोच, he's like giving so many options, मैं भी सोच रहा हूँ. So after I think 2-3 days we both were like, यार vibrant कैसे रहेगा, वाइब्रेंट में भी वो बात नहीं आ रही है. सो वाइब्रेंट से कर करके हम लोग वाइब्रेशंस में आए कि लेट्स गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू एवरीवन, लेट्स टेक दिस डांसिंग वाइब्रेशन कह लो या पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लेट्स टेक दिस टू आवर सिटी. सो इस तरीके से हम लोग और आज तक हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं थ्रू आर आर्ट, थ्रू आर डांस, थ्रू आर वर्ड्स, थ्रू आर पॉजिटिविटी.
2: काफी यूनिक नाम आपने रखा है, मतलब सुनने को मिलता नहीं है ये नाम आसानी से कि कोई अपनी डांसिंग अकेडमी का नाम वाइब्रेशंस रखे.
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ.

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ
1: हेलो हाय नमस्कार आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो मेरे यानी किरण के साथ में। तो जब स्वरोजगार की बात होती है तो महिलाएं तो आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। तो आज एक बार फिर मेरे साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर है जो न सिर्फ स्वरोजगार को उन्होंने अपनी जिंदगी से जोड़ा बल्कि दूसरों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ मैं शशि बहुगुणा रतूड़ी का जो की फाउंडर है नमक वाली की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: धन्यवाद आपका।
1: कैसा लग रहा है आज आपको रेडियो पर आके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले स्वरोजगार की जब बात करते हैं तो नमक वाली का जो ब्रांड नेम है उत्तराखंड में उससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर उत्तराखंड में है तो पिसा हुआ नमक हो, चाहे रोटाने हो और चाहे अरसे हो, ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे बचपन को हमें याद दिलाती हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो नमक वाली की कहानी कहाँ से शुरू हुई?
2: नमक वाली की जो कहानी है वो अभी हमारे 2018 से मैं एक वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन करती हूँ। तो उसी दौरान उसी सब चीजों की जो एक मेरा उत्तराखंड का जो फोक लोकगीत है उनकी मैं 8-10 महिलाओं के साथ मैं प्रैक्टिस करती थी रोज।
1: अच्छा।
2: और आज भी करती हूँ। तो उनमें से जैसे रेखा कुठारी है, सुशीला सेमवाल है, परमिला पांडे है, जो मेरे पूरी जो मेरी संस्था है जो मैं मतलब 1982 से काम कर रही थी तो मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं थी। तो वही जो है नमक पीस करके लाती थी और मैं भी अपने सिलबट्टे पे बनाती थी।
1: अच्छा।
2: तो एक दूसरे को सब लोग टेस्ट कराते थे।
1: अच्छा।
2: तो उनमें से जो है रेखा कुठारी जब अपना ये सिलबट्टे का पिशू लोड लेके आई तो मैंने उसको जो है जैसे मतलब और भी कुछ महिलाएं थी तो उन्होंने क्या किया कि कल हमारे लिए लेके आना, कल हमारे लिए लेके आना। तो मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि हमारे लिए लेके आना है और ये सिलबट्टे पे इतनी मेहनत होती है और आज की जो बात कहें हम तो सारा हर घर में सिलबट्टा एक कोने में पड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
2: सब लोग जो है आपके मिक्सी में चटनी बनाते हैं, मिक्सी में हर काम मिक्सी में होता है। तो मैंने उसको एक जैसे उसने नमक दिया तो मैंने उसको सब लोगों के सामने 100 रुपए दे दिया।
1: अच्छा।
2: कि आपका पारितोषिक है। और पारितोषिक है उसी दिन से मेरे मन में आया कि हमारा जो सिलबट्टा है वो सिलबट्टा एक कोने में बैठ करके रो रहा है कि मेरी कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। मैं इस सिलबट्टे से हमारे पूरे घर परिवारों में नमक पिसा जाता था, चटनी पिसी जाती थी और सब्जी नहीं थी तो चटनी रोटी लोग खाते थे, नमक रोटी खाते थे। वो सब समाप्त हो गया धीरे धीरे और हमारी पुरानी जो हमारी दादी नानी ये सब बनाती थी, माँ बनाती थी, वो खत्म हो चुका है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि इसको जो है नमक को हम एक छोटी सी पुड़िया बना करके ऐसे करके जैसे वो कैसे पेपर बोलेंगे उसको, खाकी रंग का पेपर होता है जो, उस पेपर में उसको बना करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमने उसको डाल दिया। तो अब लोगों ने ऑर्डर किया उसका। अब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे लोगों को अच्छा लगे तो पूरे देश भर के लोगों ने वो छोटा सा पैकेट ही लेने शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
2: तो पैकेट लेने शुरू किए तो हमने एक महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ से बढ़ाया।
1: दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट है नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी.
3: ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख करके कुछ भी चीज करते हैं. हमारे जो अंदर से निकलता रहता है उसी पर हम काम करते रहते हैं
4: जी.
3: तो वो हमने एक शुरू कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से शुरू किया, तो उसके बाद तो इंडिया
4: आगे बढ़ता,
3: बढ़ता गया. बैटरी इंडिया ने स्टोरी छाप दी.
4: हाँ.
3: और बहुत सारे उस जब बैटरी इंडिया ने स्टोरी छापी तो 300-400 कॉल एक दिन में आने लग गई.
4: अच्छा.
3: हाँ.
4: ऑर्डर्स की
3: पहले पूछने के लिए, फिर ऑर्डर भी हुए.
4: अच्छा.
3: लेकिन उनमें से कितने कॉल हम उठा पाते ये भी था. फिर धीरे धीरे धीरे करके आज वो जो है इतना अच्छा स्वरोजगार बना है कि उसको देख करके हमारे उत्तराखंड के कम से कम 20-25 लोगों ने नमक वाली शुरू किया है, नमक बनाना शुरू किया है. अब वो आगे कितना पहुंचा रहे वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन शुरू किया है. तो अगर माना हम कोई अच्छी पहल, अच्छा काम करते हैं, और काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है ना. सबसे मेन बात है कि जो महिलाएं स्वरोजगार पर काम कर रही हैं वो पार्ट टाइम कर रही हैं, है ना. एक दो महिलाएं ऐसी होंगी जो परमानेंट काम करती हैं, लेकिन बाकी तो पार्ट टाइम काम कर रही हैं. अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर का खाना भी बना रही हैं, अपने घर की पूरी व्यवस्थाएं बना रही हैं. उसके बाद अपना समय निकाल करके एक दो घंटे नमक सिलबट्टे पे बनाती है. तो उनको एक बहुत अच्छा रोजगार मिला.
4: अच्छा.
3: हमने नमक वाली ब्रांड तभी बनाया कि हमने वो पिशुन लूण के हिसाब से जा रहा था. तो यही नहीं कि खाली हमारा नमक वाली है तो नमक जा रहा है, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं.
4: हाँ.
3: पड़ी भी है, तो हमने उसका ब्रांड ही नमक वाली बना दिया. और आज पूरे देश में जा रहा है, आगे जा करके हो सकता है बाहर भी जाए. हम उसका लाइसेंस, मतलब धीरे धीरे बाहर भी जाएगा.
4: हाँ.
3: इनडायरेक्ट जब कोई जाता है बाहर तो वो लेके चला जाता
4: है. और ऐसे ही मार्केटिंग होती है चीज की.
3: हाँ.
4: जब एक खाता है दूसरा खाता है. और शुरुआत भी देखो नमक वाली की ऐसी भी.
3: हाँ.
4: कि एक अपने घर से पिसा हुआ लूण लेके आया, दूसरा लेके आया और सोचा. हाँ. वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ.
3: आइडिया. और जैसे घर में हम लोग भी खाते थे तो मतलब वो अपने आप ही जो है एक निकला कि इसको बाहर निकाला जाए, है ना. तो उसके एक सिलबट्टे की एक बहुत बड़ी पहचान बनी. हमारा एक नमक वाली ब्रांड है, लेकिन उसमें हमारे पहाड़ी मसाला है, पहाड़ी हल्दी है, हमारी ऑर्गेनिक दालें हैं, हमारे जो है जो भंजीरा होता है उसकी चटनी है, ड्राई अलसी है उसकी चटनी है, बद्री गाय का घी है, शहद है. तो उस माध्यम से हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और जो हमारे फार्मर हैं उनको भी एक स्वरोजगार मिल रहा है.
4: बहुत सारी चीजें हैं. वो मैंने सारी देखी है. और हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में अपने जितने भी सुनने वाले हमारे लिसनर्स हैं उन सबको भी जरूर बताएंगे कि नमक वाली सिर्फ पिसा हुआ जो है नमक या लून नहीं देती है, वो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स. हाँ. भी देती है.
2: तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के इस प्रोग्राम में अभी के लिए रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए. आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर.

0: कभी बलून एक्सरसाइज की है? डंबल वाली की होगी, रोप वाली भी की होगी, लेकिन बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है? ये मैं बताऊंगा। मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर हम कहानियां सुनाते हैं और जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप भी कीजिए जिंदगी बदलने की कोशिश। बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है, इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी आपको आपकी खुशियों तक ले जाएगी। हाँ, यही मेरा वादा है। हर कोई अपनी जिंदगी में ना खुशी चाहता है, ढूंढना चाहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से उसे कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ये सब कैसे होंगे, कैसे वो इन सब डील करेगा। उसे सिर्फ एक सच्ची खुशी ढूंढनी है और ये हर एक के दिल का एक गोल है ना। लेकिन सवाल है कि ये खुशी मिलेगी कैसे? हाउ आर वी सपोज टू इवन बिगिन लुकिंग फॉर इट? इसी के चलते लोग हैं एक ग्रुप, 30-40 लोगों का जो एक ग्रुप था, उसे एक कमरे में सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाया गया। ये सेमिनार था अबाउट लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड लर्न टू फाइंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। उनको अलग अलग स्किल सिखाए गए, लेसन पढ़ाए गए लाइफ के बारे में। सडनली स्पीकर खड़ा हुआ, अपनी बात कहते कहते रुका और उसने हर एक शख्स जो वहां बैठा था उसको एक बलून दिया। कहा कि इस बलून पर एक पेन से अपना नाम लिख दो। सबने अपना नाम लिख दिया। सारे बलून्स कलेक्ट किए गए और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया गया, वो सारे बलून्स। अब जितने भी डेलीगेट्स बैठे थे, इनका वो कोर्स कंप्लीट हुआ। इनको बोला गया कि अब एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको दूसरे रूम में जाना है और अपना बलून ढूंढ के लेकर आना है 5 मिनट में। सब लोग रूम में गए, सारे बलून जो थे वो रूम के बीच में रखे हुए थे, कौन सा किसका है किसी को नहीं पता था। तो सब लोग बस पागलों की तरह अपना बलून ढूंढने, अपना नाम जो था वो ढूंढने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। चारों तरफ क्योस हो गया, कोई भी अपने बलून तक नहीं पहुंच पाया। गिवन टाइम 5 मिनट में। सब लोग अभी तक तो ये समझते रह गए कि उन्होंने किस पर लिखा था, कलर कौन सा था, ये वाला मेरा है क्या, ये वाला तेरा है क्या। फिर वो अपने कमरे में वापस आए लेकिन खाली हाथ। फिर जो स्पीकर था उसने कहा कि आप में से किसी को बलून नहीं मिला। अजी ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए इस बार तरीका बदलते हैं। अब एक काम कीजिए, उस कमरे में जाइए, कोई भी एक बलून लाइए, इस कमरे में आइए, इस कमरे में पूछिए कि ये बलून किसका है और उसको वो बलून दे दीजिए। सबको लगा कि ये शायद ज्यादा सिंपल है। वो गए, बलून उठाया, जिसका भी नाम था उसका नाम लिया, जिसका नाम आया उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसको बलून दे दिया। 5 मिनट में सबको अपने अपने बलून मिल गया, सब एक स्ट्रेट लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर उस स्पीकर ने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन आवर लाइव्स। एवरीवन इज फ्रेनेटिकली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, नॉट नोइंग वेयर इट इज। लेकिन हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियां, इट लाइज इन द हैंड और इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। आप उन्हें खुशियां दीजिए, यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस। आप उन्हें उनका बलून दीजिए, आपको आपका बलून मिल जाएगा। आप उन्हें खुशियां देंगे, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारी खुशियों की चाबी दूसरों को खुश करके ही मिलती है। जब हमारी फैमिली खुश होती है, दोस्त खुश होते हैं, बॉसेस खुश होते हैं, तभी तो हम खुश होते हैं। तो हमारी जो खुशी है दूसरों की खुशी पर डिपेंडेंट है। हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। ये बर्नार्ड मेल्जर ने कहा था। Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it. चलिए फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, आप सुन रहे हैं Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: ये है Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in.

0: This is Bookipedia, only on Book Talk Radio.
1: Bookipedia में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है The Four Agreements और राइटर हैं डॉन मिगुएल रुइस। राइटर इस बुक में कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को बचपन से ही उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके भाई बहन, उसके यार दोस्त या बुक्स से और टीवी से या मैगजीन्स के थ्रू वो जो भी इम्प्रेशंस लेता है, यानी कि जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको पूरी तरह से मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। यानी उसे एक तरह से उन सब बातों के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट को करने की वजह से उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से कई बार करप्ट हो जाते हैं, जिनको वो एडल्ट होने के बाद भी, यानी बड़ा होने के बाद भी पूरी तरह से जीता रहता है, क्योंकि उसके माइंड की टेप में वो ही रिकॉर्डिंग्स करी गई हैं। तो राइटर कहते हैं कि कई बार इन सारे निगेटिव प्रोग्रामिंग्स की वजह से हम लोग एक तरह के हेल में जीना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हमको इस बुक के अंदर चार ऐसे एग्रीमेंट्स बताए हैं कि अगर हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम उस हेल से निकलकर हेवन की तरफ जा सकते हैं। यानी कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारी जिंदगी स्वर्ग की भांति हो सकती है। इनका फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यानी हर वो शब्द जो आप किसी और से कहते हैं या वो शब्द जो अपने मन के अंदर आप अपने आप से कहते हैं किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर, अगर वो शब्द जो आप अंदर से चाहते हैं, महसूस करते हैं और जिस तरफ जाना चाहते हैं उसके साथ हारमनी में नहीं है, यानी उससे अपोजिट है, तो वो इम्पैकेबल नहीं है। इम्पैकेबल का एग्जैक्ट अर्थ है विदाउट सिन, यानी पाप रहित। लेकिन पाप रहित हमारे लिए क्या हो सकता है? पाप रहित इनके हिसाब से वो चीज है जो भी आपको अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाता है। यानी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इम्पैकेबल नहीं है। तो आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक मैजिक स्पेल की तरह से हैं। इनका कहना है कि आप एक तरह से किसी आदमी के बारे में निगेटिव अगर बोलते हैं तो आप एक तरह से एक निगेटिव स्पेल दे रहे हैं उसको, यानी आप उसके ऊपर एक काला जादू कर देते हैं। तो अपने शब्दों के चयन में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है तो हम इस पहले एग्रीमेंट को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सेकेंड एग्रीमेंट जो इन्होंने बताया है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात हमको लगती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम में से कोई भी आदमी चीजों को पर्सनल लेने में एक एक्सपर्ट है। आप एक कल्पना करके देखें, कोई एक इंसान जो सुबह उठता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, उसके उस दिन लॉटरी लग जाती है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, तो वो बहुत खुश है। शाम को अगर वो आपके साथ बात करेगा तो आप सोच सकते हैं वो आपको किस तरह से ट्रीट करने वाला है। लेकिन हम एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर वही आदमी सुबह उठते ही उसको पता चलता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसका एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे डिच कर देती है, तो वो किस तरह की मनोदशा में होगा और वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों ही परिस्थितियों में आप सेम हैं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस स्थान उस इंसान के साथ क्या चल रहा है ये बात आप बहुत भली बात ही समझ चुके हैं। तो इनका जो सेकंड एग्रीमेंट है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इनका तीसरा एग्रीमेंट है डोंट मेक अज्यूम्पशंस। जी हाँ, ये कहते हैं कि आपको कुछ भी मान ही नहीं लेना चाहिए अपने मन में किसी भी चीज के बारे में। आपको अगर अज्यूम्पशन से बाहर आना है तो आपको क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए और आपको बहुत बोल्ड होना चाहिए इस मामले में कि आप तब तक क्वेश्चन पूछे दूसरे आदमी से जब तक कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि आपको कुछ भी अज्यूम करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस ऐसी आती हैं, मैं देखता हूं कि उसमें 90% प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में एज्यूम करके चलते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो हमें प्यार नहीं करता या वो हमारे खिलाफ हर समय सोचता रहता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज्यूम्पशंस होती हैं। तो आप सोचिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं जब एक छोटी सी घटना घटती है और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिवली उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम उसको इतना इनलार्ज कर देते हैं एज्यूम कर करके कि हम खुद ही उसके बोझ के तले दब जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी एज्यूम करने से पहले इस थर्ड एग्रीमेंट को समझ लेना है, याद कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इनका जो फोर्थ एग्रीमेंट है वो बहुत ही कमाल का एग्रीमेंट है। ये कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। जो शुरू के तीन एग्रीमेंट्स हैं, यानी बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अज्यूम्पशंस, ये तभी काम करते हैं जब आप ये फोर्थ एग्रीमेंट को, यानी ऑलवेज डू योर बेस्ट को, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, मैंने एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी, टॉम पीटर्स की कोटेशन थी। वो कहते हैं कि एक्सीलेंस इज द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फॉरगेट द लॉन्ग टर्म, मेक द नेक्स्ट 5 मिनट्स रॉक। इस कोटेशन ने मेरे को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको लंबा नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी लाइफ में इस पल से आने वाले 5 मिनट को आपने एक्सीलेंट बनाना है और आपकी पूरी लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगी। ये कोटेशन पूरी तरह से इनके फोर्थ एग्रीमेंट को कंप्लीट करती हुई दिखती है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब बुकीपीडिया में द फोर एग्रीमेंट्स। हम कोशिश करते हैं कि बुकीपीडिया के अंदर हम बहुत कम समय में आपको किसी भी एक किताब के कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे लेसन्स दें जिनको अपनी लाइफ में इमीडिएट उतारकर आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकें। आप सुन रहे हैं बुकीपीडिया वॉक टॉक रेडियो पे, मैं गिरेंद्र भारती, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक

ये है इंडिया का पहला मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। मेरा नाम है बैंडी और देखिए खुशियों के बाद एक अलग सी जो एनर्जी हमारे सबके अंदर आई है वो बहुत ही कमाल की है, बड़ी बेमिसाल है। तो इसी के साथ अनसुने किसे शोगी हो चुकी शुरुआत। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके अंदर इतनी गहराई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दी जाए कि जिंदगी में कुछ भी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके मेरे आसपास हो, आपको भी घबराए ना, वो ज़रूरी भी है। और बस यही वॉक टॉक रेडियो का एक मकसद है और उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता हमें पसंद करते हैं अपना फीडबैक ज़रूर देते होंगे। चलिए ज़रा सी देर में शो की शुरुआत करते हैं।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूं दून की नौनी आरजे शिवांगी और शो चल रहा है सिटी टॉक्स। तो आज ना जब मैं घर से ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको पुलिस ने रोका हुआ था। अब मुझे लगा कि पुलिस चलान वलान तो काट रही है, लेकिन किस चीज का काट रही है। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने आगे जाकर एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। एंड सच बताऊं ये मास्क पहनना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मतलब आए दिन लोग ऐसे ही घूम रहे, कोरोना को इतना लाइटली ले चुके हैं कि क्या ही बोला जाए। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग तक का तो दूर दूर तक पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या ही बोले, कभी आप मार्केट की साइड निकल जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो फ्री फंड में एक और एडवाइस मैं आप सभी को देना चाह रही हूं कि आप जहां भी जा रहे हैं मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर का रेगुलरली उपयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो भाई पालन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना भैया है ना ये वापस दस्तक दे चुके हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि वापस से आप सभी के सब घर पर बैठ जाएं तो प्लीज ये सारी गाइडलाइंस का ढंग से पालन कर लीजिए। तो फिलहाल मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट, लीजिए सुनिए अमेजिंग सा ट्रैक और बने रहिए मेरे यानी दून की नौनी आरजे शिवांगी के साथ ऑन शो सिटी टॉक्स पर, ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुँच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडहरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती हैं कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमेटस एथेंस से महज 5-6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती हैं कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। Did you know that? ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे उन लोगों से खुश नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइएगा। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर, वॉक टॉक रेडियो पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है मेरा शो सफरनामा।
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ में किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने ये कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं?

अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं। अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है। और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे ना जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो, का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
0: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: टॉल डार्क एंड हैंडसम ऐसा लड़का देख कर ना मन करता है बस एक बार मिल जाए ये। सो वैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे चैंपियन की कहानी आपको बताई जाए जिसे सुनकर आपको भी मजा आए। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ, और मैं हूं अनसंग चैंपियंस के साथ मुस्कान आपके साथ। खेलों की बात हम जब करते हैं तब सबसे पहले हम उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पुलेला गोपीचंद के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 16 नवंबर को और प्रकाशम जिले में, जिसका नाम प्रकाशम था, लेकिन पुलेला गोपीचंद ने वहां पर असली में प्रकाश फैला दिया था। उन्होंने एक्चुअली सिर्फ प्रकाशम में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया था। 1991 में जब उन्होंने खेलना शुरू किया इंडिया के लिए, तब सबसे पहले मलेशिया के लिए वो खेलने गए थे, मलेशिया के खिलाफ एक्चुअली। उसके बाद तीन बार 1998 और 2000 में थॉमस कप में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। अनेकों बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था उन्होंने। टूर्नामेंट में विजय हासिल कर भारत को गौरवान्वित तो महसूस कराया ही, उसके अलावा 1996 में विजयवाड़ा में सार्क टूर्नामेंट में और 1997 में कोलंबो में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। वो कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत कड़े मुकाबलों के बीच भी रजत और कांस्य पदक जीते थे उन्होंने। 1997 में दिल्ली में ग्रैंड पिक्स मुकाबलों में उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी और सबसे अच्छे खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था उन्होंने। आपको पता है कि फाइनल में वो हार गए थे, पर खेल में यही तो मजा है, कभी हार तो कभी जीत। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए अकेले इंडियन प्लेयर थे पुलेला गोपीचंद। आपको पता है प्रकाश पादुकोण के रिटायर होने के बाद इंडिया में कोई बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था। जब पुलेला गोपीचंद सामने आए तब सबको इनसे इतनी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि यही बस नाम रोशन करेंगे। और लास्ट में प्रकाश पादुकोण के बाद आगे बढ़कर चमकने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी सिर्फ पुलेला गोपीचंद ही है। वो देखने में बहुत अच्छे तो लगते ही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉट हैं, हैंडसम हैं, बहुत टॉल हैं, उनकी हाइट है 6'2", मतलब लड़कियों को अक्सर लंबे लड़के बहुत पसंद होते हैं। 2000 में ऐसा हुआ था कि पुलेला गोपीचंद थॉमस कप में फाइनल में पहुंच गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया जो है खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है। फिर जब गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड खिताब जीता 2001 में, तब लगने लगा था कि मानो हम चांद तक पहुंचने वाले हैं, मतलब सीढ़ी मिल गई है हमें। पुलेला गोपीचंद वही सीढ़ी थे। अब हमारे उस टाइम पर 6 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में थे, टॉप 100 में 6 प्लेयर्स इंडिया से थे। और आपको पता है पुलेला गोपीचंद 2001 में 4th रैंक पर थे, मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि बस यार हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। उन्होंने 2001 में चीन के चैन होंग को फाइनल में 15-12 और 15-6 से हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी। इस तरह से प्रकाश पादुकोण के बाद इस जीत को हासिल करने वाले वो सेकंड इंडियन बन गए थे। मतलब आप सोचो, वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो गया है और आप भारत में दूसरे नंबर पर हो। पहले नंबर पर प्रकाश पादुकोण थे और 1980 में उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी प्रकाश पादुकोण ने। और उसके बाद 2001 में नाम आया पुलेला गोपीचंद का। उन्हें 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत इफेक्ट पड़ा और 2003 में उनकी रैंकिंग गिरकर 126 पर आ गई थी। 2005 में उन्हें फिर से सम्मानित किया गया था। उन सबके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, पर अभी ये बता देती हूं कि गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी चलाते हैं। अब वो एक जाने माने कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आज भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। उन प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं? आई एम श्योर जानते होंगे, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। इन दोनों की अगर कोचिंग की बात की जाए तो वो पुलेला गोपीचंद ने ही दी है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। जब वो खेलों में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी एकेडमी खोलूंगा, लेकिन वर्ल्ड क्लास एकेडमी खोलने के लिए बहुत पैसे लगते। और इसके पीछे की पूरी कहानी जरूर बताएगी मुस्कान आपको। सुनते रहिए अनसंग चैंपियंस, जिसमें आप मुझे यानी कि मुस्कान को सुन रहे हैं, और आज मैं आपको बता रही हूं पुलेला गोपीचंद की कहानी। एक ऐसा चैंपियन जो एक टाइम पर टॉप 5 में था पूरे वर्ल्ड में, और फिर धीरे धीरे कहानी बदलती चली गई। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना तय है, जीना इसी का नाम है। आप मेरे सुरों पे मत जाइए, मुझे पता है मैं बहुत बेसुरा गाती हूं, लेकिन जज्बातों को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप थोड़ा सा डाउन है, तो ट्रस्ट मी कल आप टॉप पर हो सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मुस्कान विल बी हियर बस थोड़ी ही देर में।

जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पे भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, मेरे यानी आरजे किरण के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे, और हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर खुश नहीं है, खुशी आपसे दूर है, तो ढूंढिए आसपास, कहीं ना कहीं खुश होने का मौका मिल ही जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी, और कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं किस वीर गाथा को आप सभी के बीच में सुनाने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि वतन से ज्यादा खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और मुझे लगता है कि जो हमारा वतन है, जो हमारा देश है, अगर हम उसके लिए एक काम भी करते हैं ना, एक बदलाव भी अगर हम अपनी तरफ से लेकर आते हैं, तो बड़ा प्राउड हमें फील होता है। बशर्ते कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की हो तो हमें प्राउड होगा, या तो हम उस फीलिंग को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो फीलिंग क्या होती है। कभी किसी आर्मी पर्सन से, किसी पुलिस फोर्स के जवान से, या फिर किसी भी इंडियन फोर्स के जवान से आप ये बात पूछेगा, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ये बात पूछेगा जो हर पल अपनी जिंदगी का हर क्षण, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है, फैमिली उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो हमारा देश है वो उनके लिए उनकी फर्स्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में आते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो बचपन से ही एक सपने को लिए जीते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है। कई सारे लोग शायद टीवी पर देखकर उन सपनों को जीते हैं, वहां से इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है कि मुझे भी ये करना है। हो सकता है कि किसी ने अखबार में किसी को देख लिया हो और उसने सोचा हो कि मुझे ये करियर चूज करना है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे माहौल में पैदा भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जहां पर उनके अंदर एक जज्बात समा जाते हैं कि मुझे तो बड़े होकर इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इंडियन आर्मी का। तो कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी महान पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिन्होंने न सिर्फ सेना को अपनी परवरिश में जिया है, बल्कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी कि जब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की, जब बात आती है करियर चूज करने की, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि उनको इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जाना है, फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी। वेल, मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि हाल ही में उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी है, वो एक फिल्म के जरिए कुछ घंटों में हमें दिखाई गई। लेकिन आज कॉल फॉर ड्यूटी में मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर उनको याद किया जाए, क्यों ना उनकी जिंदगी में थोड़ा सा फिर से झांका जाए और याद किया जाए उनके उन वीर पलों को जो उन्होंने बिताए और हमेशा के लिए हमारी देश की झोली में डाल दिए। तो आज कॉल फॉर ड्यूटी पर मैं बात करने जा रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है, अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जिक्र ना करें तो वो पूरी की पूरी बात ना बिल्कुल अधूरी होती है। और आज हम करने वाले हैं ऐसी ढेर सारी बातें कारगिल युद्ध के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मेरे यानी किरण के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी। 9 सितंबर 1974 का वो दिन जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर दो बेटियों के बाद जन्म हुआ दो जुड़वा बच्चों का। कमला कांता जी और जो मिस्टर बत्रा थे, उन दोनों की ही श्री रामचरितमानस में बेहद ही गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने इस चीज को देखते हुए अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बच्चे बड़े हुए तो उनको स्कूल में डालना था। सबसे पहले डीएवी स्कूल के साथ उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में उनको एडमिशन दिलाया गया। अब स्कूल जो है वो सेना छावनी में था, यानी कैंट एरिया में था, तो स्कूल से घर आते जाते कई बार ऐसा होता था कि जो सेना के जवान हैं उनसे वो बेहद ही करीबी से मिलते थे, या फिर कह लीजिए कि बेहद करीब से उनको जाते आते देखा करते थे। कई बार वो अपनी परेड कर रहे होते थे तो कई बार कुछ काम कर रहे होते थे, कई बार वो भाग रहे होते थे तो कई बार वो किसी अर्जेंट काम के लिए बड़ी जल्दी में दौड़ लगा रहे होते थे। ये सब देख कर विक्रम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उन्हें लगता था कि सेना की लाइफ में कितनी ज्यादा देशभक्ति है, कितनी ज्यादा डेडिकेशन है, कितनी ज्यादा ऑनेस्टी है, और यही ऑनेस्टी, यही डेडिकेशन, यही एक्टिवनेस विक्रम को अपनी तरफ बस खींचे चली जा रही थी। और साथ में ये सारी चीजों को और बढ़ावा मिलता था जब वो टीवी पर कोई भी सेना से जुड़ा हुआ सीरियल देखते थे या फिर फिल्में देखते थे। उनकी वीरता की कहानियां जब वो सुनते थे तो ये सब उन्हें बहुत पसंद आता था। यानी कि ये सीरियल्स, ये फिल्में, ये कहानियां जो वीरता की थी, सेना की वीरता की थी, ये उनकी फेवरेट हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, विक्रम की अगर फेवरेट ड्रेस की बात की जाए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको वो किसी भी स्पेशल मौके पर पहनना चाहे, तो वो शायद किसी भी भारतीय फौज की ड्रेस होगी। यानी कि जो भी उनकी वर्दी है वो उनकी फेवरेट हुआ करती थी। विक्रम स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई में हमेशा टॉप किया करते थे बल्कि स्पोर्ट्स में भी उनकी बड़ी रुचि रहा करती थी। स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस में वो हमेशा टॉप के खिलाड़ियों में आते थे। वहीं कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो उसमें भी वो कभी पीछे नहीं रहे, हर जगह वो एक्टिव रहा करते थे। और यही एक्टिवनेस थी जो उनको सेना में जाने का जज्बा भरती थी। अब विक्रम का 12th कंप्लीट हुआ और उसके बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCCA एयर विंग में शामिल हुए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें NCC में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने NCC कैंडिडेट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट उनके लिए था। या मैं यूं कहूं कि सेना में जाने की जो ख्वाहिश उन्होंने अपने बचपन से अपने मन में दबाई हुई थी, उसका पहला पड़ाव वो चढ़ रहे थे। फिर 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी चुनने का ऑफर आया। अब मर्चेंट नेवी में भी कहीं ना कहीं आप कर तो देश के लिए ही काम रहे हैं, लेकिन फिर भी विक्रम के मन में एक उलझन थी कि उन्हें तो इंडियन फोर्सेज में जाना था, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में। और ये जो मर्चेंट नेवी का ऑप्शन उनके पास आया, उसको नकार कर कहीं वो कोई भूल तो नहीं करेंगे, और अगर उसको चूज कर ले तो कहीं उनके मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने का जो ये ऑप्शन उन्हें मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1995 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इंग्लिश में एमए करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। अब धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट होने जा रही थी और मन में जो सपना बचपन से पाले हुए थे कि सेना का हिस्सा बनना है ऑफिशियल तरीके से, एनसीसी से अब उनको इंडियन फोर्सेस में दाखिला लेना था, इंडियन फोर्सेस का हिस्सा बनना था, उसको कैसे पूरा किया जाए, एक मौके की तलाश में वो थे कि जैसे ही वो मौका आएगा जी जान लगा देंगे। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि फिजिकली, मेंटली और नॉलेज की तरफ से भी कोई कमी उनकी ना रहे। सेना में कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से सन से इसकी शुरुआत हुई, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर कॉल फॉर ड्यूटी में मेरे यानी किरण के साथ।
1: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा। और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशन वगैरह दोगी, यू नो, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना, वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक बार फिर मैं अपनी बहुत ही दो इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में आप सभी के साथ आई हूं। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। और क्यों लगते हैं ना, वो तो अभी जब आप भी सुनोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साथ ही वाटर कायकिंग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग भी करते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के हैं। तो आज बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डोलमा का, यानी कि सुनीता श्रेष्ठा का, और साथ में उनके हस्बैंड मेरे साथ है जिनका नाम है सोनम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और सच बताऊं तो पहले ना मैं बड़ी आज टायर्ड सी फील कर रही थी किसी वजह से, लेकिन जैसे ही आप लोगों से मिली ना मेरी सारी थकान चली गई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं ये बात बोल रही हूँ। और अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। तो मैं आपके बारे में जो है खुद बताऊं, इससे अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि सोनम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी तक की आपकी जर्नी, जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है, क्या कुछ, क्या स्टडी किया, कहाँ कहाँ से होकर आए हो।
2: ओके, मेरा नाम सोनम है और मैं रहने वाला वैसे हरसिल उत्तरकाशी से हूँ। और यहाँ देहरादून में मैं पिछले 5-6 सालों से यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ एज अ अकाउंटेंट। और मैं 9 to 5 जॉब के अलावा साइकिलिंग करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर रिवर कयाकिंग एंड स्कीइंग भी करता हूँ इन विंटर सीजन। इसके अलावा अपनी जर्नी के बारे में मैं बताऊँ तो साइकिलिंग मैंने शुरू की थी 2019 से, जस्ट कोविड उस टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था।

0: तो लाइक हाँ, तो ऑफिस से भी मतलब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा ही बिल्कुल बंद था, लाइक करने के लिए कुछ था नहीं, घर बैठो सब। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ करना चाहिए घर बैठे बैठे, तो साइकिलिंग मैंने वहाँ से शुरू की। देन देखते ही देखते मैं मतलब साइकिलिंग का इतना मेरे को शौक और इतना मतलब मुझे साइकिलिंग इतना पसंद आया कि मतलब कब मैं देहरादून से लद्दाख इन साइकिल, मैंने
1: साइकिल में
0: या
1: टोटली
0: साइकिलिंग। मैं देहरादून में कह सकता हूँ मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो देहरादून से जिसने साइकिलिंग स्टार्ट की और पूरी लद्दाख तक कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा था कि यार मेरे को मतलब जिस हिसाब से डिस्टेंस है लाइक 1400 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार पूरा महीना तो मेरे को लगेगा। बट जब मैंने शुरू की तो कब 12 दिन में कंप्लीट हो गया मुझे पता नहीं चला।
2: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

इश्क तेरा तड़पा दे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं मेरे गाने वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: अच्छा अब डोलमा आपकी बारी, आप बताइए कि आप क्या करते हो और आपकी अभी तक की क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की।
1: मेरा नाम सुनीता श्रेष्ठ है
0: जी,
1: एंड मुझे डोलमा कहकर ही ज्यादा जानता है यहाँ भी और नेपाल में भी
0: जी।
1: वैसे मैं नेपाल से हूँ, बिलोंग वहीं से करती हूँ, बट अभी मेरा शादी हुआ है यहाँ पर।
0: हाँ।
1: तो यहाँ हूँ मैं, कब से हूँ, 2 साल होने वाला है।
0: 2 साल होने वाला है।
1: तो मेरा साइकिलिंग जर्नी, साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेकिंग गाइड थी।
0: ओके।
1: और ट्रेकिंग में मुझे पता चला कि नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे उसी, जब मैं ट्रेकिंग करने लगी तब पता चला मुझे
0: जी।
1: एंड हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें फन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर मुझे, मेरे ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है एक इवेंट।
0: अच्छा।
1: नेपाल में काठमांडू कोरा करके, तो वो जून जुलाई में होता है वैसे। तो वो मेरी अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ओके मैं भी करती हूँ।
0: ओके।
1: बिकॉज ये वाला ज्यादा फन लग रहा था। मैं आउटडोर पर्सन के अलावा स्टूडेंट थी घर पे। फिर एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट्स वाला जर्नी वो मेरी स्कूल से स्टार्ट हुआ है।
0: अच्छा।
1: मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी। और मैं स्टेट में सेलेक्ट हुई थी वॉलीबॉल के लिए। तो वहीं से मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट हुआ। फिर रनिंग, लॉन्ग जंप ये सब में तो मैं अच्छी खेलती थी उस टाइम में। फिर उसके बाद थोड़ी सी, हमारी नेपाल में 10th क्लास को SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,
0: अच्छा
1: हाँ नेपाल में वो होता है, तो 10th क्लास के बाद हमें 3 मंथ्स का हॉलीडे मिल जाता है।
0: ओके।
1: हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुद को पुश करना पड़ा कि लाइक डोलमा यू शुड गो आउट एंड इंडिपेंडेंट होना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम, दिस थिंग्स आर रियली हार्ड टू एक्सप्लेन, यू नो, लाइक हम एक गांव से होता है एंड वहां पर स्पोर्ट्स ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल था। मुझे ये चीज से लगाव हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स को ये, उनको मंजूर नहीं था, दे वर लाइक टोटली अगेंस्ट मी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छी बेटी बनू, संस्कारी,
0: पढ़ लिख लू, घर का काम, जॉब कर लू, फिर शादी भी कर लू।
1: ट्रू, एग्जैक्टली। बट वो मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया।
0: ओके।
1: तो मैं टोटली थोड़ी सी उनके साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ओके इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है।
0: मैं खुद से करूंगी।
1: फिर वो 3 मंथ्स हॉलीडे में मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि आई वांट टू गो टू मामा के घर।
0: अच्छा।
1: बट एक्चुअली मैं काम करने जा रही थी।
0: और उन्हें पता चला फिर? नहीं पता चला।
1: उन्हें नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रही थी काठमांडू। एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि घर से निकल के कहीं भी जाऊं। जितना क्वेश्चंस हमें होता है उतना हमारे ब्रदर्स को नहीं होता है, भाई भैया को नहीं होता है। तो मेरे लिए वो स्टेप लेना बहुत मुश्किल था एंड बहुत जरूरी भी था। फिर मैं काठमांडू आई तो वहां पर मुझे, हमें ये लगता था कि ओके काठमांडू में जाके हमें हमारा करियर बन जाएगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ, यू नो, यहाँ इंडिया में
0: अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ज्यादा,
1: दिल्ली, दिस ऑल थिंग्स, वैसे ही नेपाल का काठमांडू है उस टाइम।
0: अच्छा।
1: तो मुझे बस ये फील हो गया था कि मुझे कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है। फिर काठमांडू पहुंची मैं एंड हमारे बहुत दूर का रिलेटिव्स है वो लोग। फिर मैं उनके साथ रही। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मामा घर जाऊं, पर मैं नहीं गया क्योंकि उनके घर जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी कहीं।
0: वो भी नहीं जाने देंगे।
1: हाँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस, तो मुझे वो नहीं चाहिए था. चाहिए था मुझे बस अपनी काम करना था, काम ढूंढना था फर्स्ट थिंग. तो काठमांडू गई, उनके साथ रही, फिर कोई पहचानने वाला भैया, उनको मैंने बात किया कि आई वॉन्ट टू वर्क, तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एजेंसी में इंट्रोड्यूस करवाया.
0: अच्छा अच्छा.
1: फिर नेपाल में इतना आसान नहीं है वो, जो हम एक बार टूरिज्म में लोग कोई भी जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हमें हायर करता है तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है. तो ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चला. तो उन्होंने मुझे बुलाया लाइक डोलमा ऑफिस आओ, बातें सुनो. एंड यू नो लाइक वो बातें सुनने के लिए मुझे 3 घंटा वॉक करके जाना पड़ता था वो जगह से. एंड मैं 8 बजे जाती थी क्योंकि मुझे सुनना था, मुझे सीखना था, सीखना पड़ता था. एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कंपनी, यू नो लाइक ना ज्यादा
0: कंफ्यूजन. कंफ्यूजन
1: एंड स्टिल मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था.
2: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो. एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितनी की ज़रूरत है वहाँ पर। आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से जिले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ तो कोई

0: भी कुछ भी कर सकता है, बस सपने देखते रहना और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे। Walk Talk Radio.

0: हाय दिस इज शाहिद माल्या, सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुने।
2: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, AKA धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए, और ये सोसाइटी

0: रियलिटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी, जो लोग होंगे आपके आसपास तो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको एज ए एग्जाम्पल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको एज ए एग्जाम्पल देखेंगे। तो यही है यार कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है, अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे, उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी, तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi guys, my name is Kavya और मैं अपने बारे में क्या कहूँ? I think मैं एक rural entrepreneur हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी.

आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे. तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी. तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स. एंड मी बीइंग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, that domain mujhe mil gaya. So wo tab se raha. But uske bare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke bare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, with the job on weekends, वो really travel नहीं था. मैं वापस आती थी अपने comfort zone में, job करती थी, salary लेती थी. It was pandemic that made me realize कि if I have a passion, then मुझे उसका test लेना चाहिए कि वो passion really है भी या नहीं. Can I last that? So I took this massive journey. It's called Kavya on Quest. थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल अट्रैक्शन है, आप देखिएगा. सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd अक्टूबर. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल. आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस. आई टुक 42 कोविड टेस्ट इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी. मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में.

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहते इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, मैंने बी एम ए जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मतलब लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहां पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बिखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो करके क्लिक करके, तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है। और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका, आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला, थोड़ा लर्निंग की जर्निंग होती है यहाँ पे। और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग की जर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: दोस्तों मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरे जिंदगी में आपको क्या लगता है अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से पल आपके अचीवमेंट्स के, मैं समझता हूँ देखिए जब हम बचपन में होते हैं तो छोटे होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं इधर से उधर, हमें कुछ पता नहीं होता कि क्योंकि हमें कुछ खोना या पाना है नहीं, ना कोई पैसे लगे पड़े हैं, नो इन्वेस्टमेंट, सो अचीवमेंट्स वहां नहीं होती। बट ऑफ कोर्स जब आप स्कूल में जब होते हो तो कभी कभी आप रेस जीत जाते हो तो वो आपकी एक पहली अचीवमेंट होती है और आपको कितनी खुशी मिलती है, फिर मार्क्स मिलते हैं, फिर नंबर वन आते हो। मेरी जिंदगी में वो सारे पल नहीं थे कभी, मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आता। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि फर्स्ट आने में इतना क्यों इतराते हो, ये जो जो जो स्कूलों में जो चार्टर कोचिंग क्लासेस के इतने बड़े बड़े फोटो आते हैं कि 10 बड़े जो नंबर 1 to 10 के हमारे हमारे हमारी क्लास के 5 छात्र उसमें मौजूद है और वो बड़े स्माइल कर रहे होते हैं कि उनको 95% 98% 98-97% मिलते हैं। मेरे को क्लास में 27 नंबर आया था मैं, और अपने भाई को मैंने अमेरिका में लिखा था जो अमेरिका में बैठे हुए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं क्लास में 2700 नंबर आया हूँ, कोई झिझक नहीं थी मेरी, मैंने उसको सक्सेस नहीं माना। जिंदगी में पहली बार मैं एसएससी में फर्स्ट क्लास आया, क्योंकि लोगों ने कहा था कि कॉलेज जाना हो तो एसएससी में मार्क्स होने चाहिए, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी मैं भी पढ़ रहा था, हमने रात रात भर के पहली बार जिंदगी में मैंने रटाफिकेशन कर करके मुझे 60% मार्क्स मिले स्कूल में, मेरी सिस्टर को 70% मार्क्स मिले, मेरी सिस्टर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसको 70% उसको डिस्टिंक्शन बोलते थे, मुझे पहली बार समझ में आया कि डिस्टिंक्शन क्या होता है और फर्स्ट क्लास क्या होता है। मैं जिंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास में आया और मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिला, वो भी मेरी जिंदगी की फर्स्ट अचीवमेंट। मैं चाहता था प्लास्टिक इंजीनियर बनूं, किसी कारणवश आज मैं समझता हूं कि भगवान चाहते थे कि मैं आयुष्मान भव कहूं, मुझे एडमिशन नहीं मिली, कानपुर में मैंने अप्लाई किया था मुझे वो एडमिशन नहीं मिली, फिर मैंने एक्टिंग में स्टेज किया, स्टेज में मैंने पहली बार चलना सीखा वो भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाकर, और उसके बाद वहां पर जो मुझे याद आता, मुझे किसी ने आके कहा था सर आपको जब अवार्ड मिल रहा था आप प्ले कर रहे थे, मेरी मदर बैठी थी मेरे ऑडिटोरियम में, मेरी फैमिली के साथ आए होंगे मेंटर, बोलता आपकी आपके वहाँ जब तालियां पड़ती थी कोई डायलॉग के ऊपर तो मेरी मां को उसने बताया, उसने दूसरे वाले जो साथ में बैठा था उसको टच करके बोला अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मुझे इतनी हंसी आई ये सुनकर, बट अगेन अच्छा लगा, वो भी शायद मेरी एक एक्टिंग की पहली अचीवमेंट। अगर मैं जिंदगी की पहली अचीवमेंट अपने करियर की कहूँ, उसके बाद भी फिर मैंने FTII किया, पुणे इंस्टीट्यूट में भी मैंने अच्छे मार्क्स तो मेरे को नहीं मिले पर योगा में डिस्टिंक्शन मिला मुझे, वो मुझे काम आता है आज। पर जब मैं निकला तो मुझे निकलने के बाद में बिना किसी से काम मांगे मुझे मेरे बड़े भाई साहब फिल्म बना रहे थे ऑलरेडी, इंसान बना रहे थे वेद भाई साहब, उनकी भी आत्मा को शांति मिले, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म के दौरान मुझे पहली फिल्म मिल गई खूनी, वो मेरी पहली अचीवमेंट एज ए करियर की थी बिना मांगे। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई साहब फिल्म बना रहे थे इसीलिए मुझे फिल्म मिली, क्योंकि वो फिल्म मुझे मिली मेरे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने मेरा प्ले देखा, जो उस वक्त मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस किया करता था, और उसके ऊपर उन्होंने कहा मुकेश आई विल मेक गॉड फादर विद यू, आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट एज ए करियर। और वो फिल्म हालांकि अभी तक रिलीज प्रॉपरली नहीं हुई, बेदी जी की डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे 15 फिल्में मिली, उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेस जो मिला वो था महाभारत। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ महाभारत मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट का मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ जब एक बहन जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई, कहा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार। मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही, बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस हंस के दूध पीता है, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दैट वॉज माई अनदर काइंड ऑफ अचीवमेंट। मैं टीवी से मैं फिल्मों से मैं यूट्यूब की तरफ मैंने भीष्म इंटरनेशनल चैनल खोला, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये भी मेरी एक अलग से अचीवमेंट। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर आपकी तो 2 इमेज थी भीष्म और शक्तिमान, ये तीसरी इमेज आ गई है। मैंने कहा कौन सी इमेज आ गई है, बोला मुकेश खन्ना की इमेज आ गई है। लोगों को आपके विचार समझने में मिल रहे हैं, आप लोगों को पहचान रहे कि अरे मुकेश खन्ना ये है, तब तक मुझे बच्चा भी कई बार एक बार मुझे बच्चों का फैमिली के साथ एक बच्चा मेरे हाथ को बोलता है तेरा नाम क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ शक्तिमान मालूम था। तो थर्ड इमेज एज मुकेश खन्ना मुझे भीष्म इंटरनेशनल चैनल ने दी है एंड आई एम हैप्पी कि मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगेन आई वुड से थैंक गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू भगवान।
1: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: हाय, मैं हूँ रविंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ देहरादून नाउ मैगजीन। मैं आज बात कर रहा हूँ वॉक टॉक रेडियो के ऊपर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ करियर एडवाइस के लिए, कि जब हम छोटे थे तो उस समय ये टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी ऐसे नहीं थे, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना कुछ नहीं था, केवल आपका याहू और रेडिफ मेल होते थे। आज के यूथ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अंदर की बात सुनकर जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर सकता है। हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, आप दिखावे पे मत जाओ, जो आपको सही लगता है, जो आपकी फैमिली एजुकेट गाइड करती है, जो आपके टीचर आपको गाइड करते हैं, जो आपको स्कूलिंग के बाद समझ में आता है कि मेरे को फ्यूचर में करना क्या है, आप वो डिसीजन लेके सबसे डिस्कस करके करें। ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आकर देखा देखी में जाके आपने ले लिया है। जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी आवाज़, अपना एक करियर बना सकते हो, पर आप उस प्लेटफॉर्म पर आप शो क्या करना चाह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। जो हमारे टाइम पे ना YouTube था, ना कुछ नहीं था, आप फोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप अपने शहर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की एक आवाज़ भी बन सकते हो, मोटिवेट, मतलब आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो कि लोग, लाइक बाहर के कुछ लोगों के आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके स्टेट के बारे में पता चले। तो आप आज के टाइम में जहाँ पे आप रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहे हो, उन लोगों की आवाज़ भी बन सकते हो। लाइक हमारी जनरेशन के टाइम पे हम टोटली फादर के ऊपर और रिलेटिव के ऊपर डिपेंडेंट थे, फ्रेंड्स की हम सुनते नहीं थे क्योंकि फ्रेंडशिप इतनी होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं वहाँ पे। एक स्कूल के वो टेंथ नर्सरी के फ्रेंड होते थे तो उनका भी सेम होता था, वो भी फैमिली के प्रेशर में। पर आज का जो यूथ है उसके ऊपर प्रेशर कम है फैमिली का, क्योंकि फैमिली को आज के टाइम में पता है कि हमारा जो बेटा है, बेटी है, उसको अपने करियर का डिसीजन खुद ही लेना है, हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम उसको समझा सकते हैं। तो आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपको सही लग रहा है, आपको फोकस माइंड आप लेकर आगे चल रहे हो कि मेरे को आगे ये करना है, डिस्कस करके प्रॉपर उसके इफ एंड बट समझें उसके बारे में, तो आप जो करियर ऐसा चूज करो जिसमें आपको अंदर की पीस भी मिले, ग्रोथ भी मिले और एक नेम भी मिले।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life. ये है Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
1: रेडियो, वॉक टॉक रेडियो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। Tune in for a better life. Walk Talk
2: Radio. बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लेट्स फेस इट, ये सच्चाई है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लैंग्वेज ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो प्रोफेशनली आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजीली एक्सेप्टेबल है, रादर देन मेकिंग इट यू नो लाइक मेकिंग इट टू ऑब्वियस दैट यू आर नॉट गुड विद द लैंग्वेज। उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप। वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को, मैं हूं एक्टर नियो फर्सवान, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं जिस भूमि से हूं, जिस मिट्टी में पला बड़ा हूं, तो यहां का ऋण तो मैं शायद मतलब जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे बनाने वाले लोग हैं यहां के। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरे पहले डेब्यू सॉन्ग को सपोर्ट किया। यहां की म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ने का यही है कि आप क्वालिटी कंटेंट दो, अच्छे गाने बनाओ, म्यूजिक की आपको टेक्निकल नॉलेज, म्यूजिक हो चाहे सिनेमा की, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी। और प्लस देखो एक चीज़ है, आप जो ऑडियंस को दे रहे हो, लगातार दे रहे जा रहे हो, तो ऑडियंस वही सुनती जाएगी, वही सुनती जाएगी। आप बोल रहे हो कि अगर स्लो सॉन्ग्स नहीं चल रहे उत्तराखंड में, डांस नंबर चल रहे हैं, इसका कारण भी हम ही आर्टिस्ट हैं। किसी भी ऑडियंस को जो खिलाएंगे या जो जो जो भी चीज़ हम देंगे उनको, उनको हम उसी चीज की आदत डालेंगे। तो यही है कि हमें अच्छा अगर हम कंटेंट देंगे आर्टिस्ट को और लोगों को, तो उनको उसी चीज की आदत पड़ेगी। तो हम स्लो सॉन्ग भी अगर अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो लोग वो सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। तो यही है, अपने जो है टेक्निकल चीजों पे काम करना जरूरी है। और सिनेमा, अगर हम सिनेमा में काम कर रहे हैं या म्यूजिक वीडियोज में काम कर रहे हैं या ऑडियो में काम कर रहे हैं, वीडियो में कि कोई भी, ये सिनेमा की कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई और टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गाने उतने मिलियन व्यूज़ नहीं गए। चैता की चैतवाली और कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं। तो ये है कि हमारे जो फोक म्यूज़िक और फोक कल्चर में बहुत पावर है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे मुंबई में लोग मेरे फोक म्यूजिक की वजह से जानते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वहाँ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, साउथ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, तो मैं यहाँ के कल्चर के जो मेरे ओरिजिनल म्यूजिक है उसको सुनाता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं, वो लोकल जो रीजनल आवाज़ है, रीजनल म्यूजिक है, वो सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे कल्चर और हमारी स्टोरीज, हमारे म्यूजिक में बहुत पावर है, बट उसको सही तरह से दिखाना, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना, वो हमारा कर्तव्य है। और हर इंसान अगर अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाएगा, तो वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करेगी।
3: वॉक टॉक रेडियो,
0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन।

हाय गाइस, मेरा नाम है निकिता वर्मा। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे सुन रहे हो वॉक टॉक रेडियो पे। फैशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो बहुत कम फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे कंट्री में। मतलब 5 ईयर्स हो गए जब मैंने शुरू करा था, तभी जो भी अभी बहुत फेमस हो चुके हैं बस वही कर रहे थे। बट अभी वी कैन सी लाइक एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर गर्ल बॉय, दे आर परस्यूइंग बीइंग फैशन इन्फ्लुएंसर। तो फैशन अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंट्री में, और मॉडर्नाइजेशन आ गया है फैशन इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके के फैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे कोई कैजुअल प्रेफर करता है, कोई स्ट्रीट स्टाइल, कोई क्लासी एंड मिनिमल, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। और फैशन क्या है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो कर रहे हो। कोई अपनी मूड को शो करता है, कैसे कपड़े पहन रहा है उस दिन। कोई स्पोर्टी फील कर रहा है, कोई किसी का मूड ऑफ है तो उसने उतना एफर्ट नहीं डाला है उस दिन। तो आप किसी को देख के बता सकते हो कि आज वो कैसा फील कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फैशन इंडस्ट्री यही है कि आप अपने आप को कैसे शो करते हो, और बीइंग फैशनेबल एक आजकल कैरेक्टर है, और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हो। सो बीइंग फैशनेबल, मैं 5th क्लास तक वहीं पे पढ़ी थी बिहार में, और मेरी मम्मा नेपाल से हैं, तो मेरी मासी नेपाल में रहती थी उस टाइम में। तो मेरी मम्मा को लगा कि यहाँ पे थोड़ी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है व्हेन यू आर गोइंग इनटू टीनेज। तो मम्मा ने मुझे नेपाल में भेज दिया था मासी के पास। तो 5th to 10th standard में नेपाल में थी, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली इन 11th क्लास। तो 11th से आज तक मैं दिल्ली में ही हूँ, लाइक इट्स गोइंग टू बी 8 ईयर्स इन दिल्ली। तो 11th 12th में आई वॉज इन बोर्डिंग। बोर्डिंग में उतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिला मुझे, क्योंकि अंदर ही एक दुनिया थी मेरी अलग। तो ये एक्सपोजर मिला कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से, इनफैक्ट थाईलैंड से भी वहाँ पे लोग थे, तो बहुत वो एक्सपोजर था कि अलग अलग जगह के लोग आए थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि उस टाइम इंग्लिश पे काम किया। बिहार से आई थी, नेपाल में भी रही थी, बट हाँ इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लैकिंग। तो बोर्डिंग में रह के, और जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट से थे, दे स्पीक इंग्लिश मोस्टली, तो उनके साथ इंग्लिश बोलते बोलते मेरी इंग्लिश तभी फ्लुएंट हो गई थी। वो एक्सपोजर मिला, फिर भी लाइफ को हैंडल करने का, या मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ उस 10th के बाद ही, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको, ये वो। तो एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो सबने चूज़ किया मेरे लिए कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मैं बहुत अच्छी थी, 10th में 10 CGPA, 12th में 87.2% ऐसा हमेशा मतलब हमेशा एकेडमिक्स में अच्छा ही करा है मैंने बचपन से। फर्स्ट टॉपर, स्कूल टॉपर ऐसा। तो नोबडी थॉट कि अचानक से बीटेक से फैशन एंड एवरीथिंग। तो जब मैं MT गई बीटेक करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला एक फैशन का, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी उस टाइम अपने बॉडी के ऊपर। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तो मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और जब मैंने अच्छे से अपने ऊपर काम कर लिया, उसके बाद मेरा फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उससे पहले तो मुझे कुछ भी मतलब नहीं था, पढ़ाई खाना पढ़ाई ऐसा तो सोचा नहीं था। जब मैंने अपने ऊपर काम किया, उसके बाद फैशन में इंटरेस्ट लेने लगी, और अपने OOTD की पिक्चर्स में पोस्ट करती थी, आउटफिट ऑफ द डे, कॉलेज जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह चेंज करी है, स्कूल कॉलेजेस, तो उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे। और हाँ, 6,000 जब मेरे फॉलोअर्स थे, तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया था, बिकॉज तब मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था, बाटर कोलैब था वो एक, बट दे अप्रोच मी। तो आई वाज लाइक, व्हाट इज़ दिस अबाउट, ऐसा क्यूरियोसिटी थी। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, उस अपॉर्चुनिटी को। तो वो मेरा फर्स्ट कोलैब था। तो हॉस्टल में मेरे साथ फ्रेंड्स रहती थी, दे यूज़ टू शूट फॉर मी, वो मेरे लिए शूट करती थी तभी। तो कभी फ़ोटो वोटो क्लिक कर दिया, अच्छा अच्छा जब भी पहना। तो वैसे स्टार्ट किया था मैंने फैशन को, फैशन में मेरा इंटरेस्ट था, मेकअप में। जब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया था, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। उससे पहले तो बोर्डिंग में रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, राइट। तो हाँ, जब से मैं कॉलेज में गई, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, OOTD पोस्ट करना शुरू किया, देन
तब मेरे को फैशन में इंटरेस्ट आया, और जब मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो गए, ये कोलैब वगैरह मुझे आ रहे थे, तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करी जो इस फील्ड में हैं। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन आ गया, बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स आ गई। मतलब पे कम करते थे वो, क्योंकि मार्केट डाउन था ऑफ कोर्स, बट हाँ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि सारे ब्रांड्स आ चुके थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं कहीं उनको चाहिए होते थे प्रमोशंस तो। और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ भी किया, क्योंकि मेरा कॉलेज रहता था तो मैं कम कंटेंट क्रिएट कर पाती थी। ज़्यादा कंटेंट क्रिएट किया, फिर मोनेटाइज हो गया मेरा पेज, मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग पेड कोलैबोरेशंस। उसके बाद से तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक।

0: एनीबॉडी कैन डांस, ये चीज हम सबने सुनी है। शायद सब डांस भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और बेहतर तरीके से डांस करना ये कला सब में नहीं होती। दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उनको डांस करने का बहुत शौक था, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, डांस कॉम्पिटिशन हो, उनका नाम लिस्ट में होगा ये उनको पता होता था। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि बड़े होके एक दिन वो दोनों साथ मिलके एक डांस स्टूडियो खोलेंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी सेम स्कूल में डांस सिखाएंगे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो दो टैलेंटेड, डायनेमिक और वाइब्रेंट लड़के आज हमारे साथ हैं, हर्षित गुप्ता एंड अभिनव भट्टाचार्य, को फाउंडर्स ऑफ वाइब्रेशंस द डांस स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉक टॉक रेडियो में।
1: थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।
2: थैंक यू सो मच गौतम।
0: सबसे पहले इस नाम के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेशंस, ये नाम रखने के पीछे कोई खास रीजन?
1: सो वाइब्रेशंस आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, यू एज अ पर्सन, आई एज अ पर्सन, अभिनव एज अ पर्सन, वी ऑल हैव डिफरेंट वाइब्रेशंस। ओके, सो वाइब्रेशंस इज समथिंग, यू नो, if you send it in a positive way outside, it'll multiply. If you send it in a negative way outside, it'll multiply. So when we were coming back to Dehradun, humne yahi socha tha ki yaar, we've been working on our art since so long and we always wanted to give it back to the city. To hum apni positivity lekar jab hum shahar ke andar jayenge, to usi vibrations ko we would want to spread in the entire city. In fact, अभी तो हम तब हम सिटी की बात कर रहे थे, अब तो हम काफी जगह काम करते हैं, तो वी आर स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर। सो और ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस एकदम से आया, इसकी स्टोरी अभिनव भी आपसे शेयर करेगा, बिकॉज वाइब्रेशंस नाम रखने में ना हमें नहीं पता था कि हम इस चीज को इतना आगे लेके जाएंगे। वी हैड अ थॉट कि हाँ ठीक है, हम हमारी पॉजिटिविटी और हमारी ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स आवर आर्ट विल टेक अस समवेयर, बट नाउ दैट इट्स ग्रोइंग सो वेल, we are very happy that we, you know, we got stuck to this name called Vibrations.
2: Yes, actually, it took quite a lot of time. जब हमने Vibrations सोचा नाम, हम लोग, I think around 1 week we were just talking on phone or if we were meeting. So हम लोग बस पूछ सोच रहे थे, अच्छा हर्षित तू भी सोच, he's like giving so many options, मैं भी सोच रहा हूँ. So after I think 2-3 days, we both were like, यार vibrant कैसे रहेगा? यार vibrant पे भी वो बात नहीं आ रही है. So vibrant से कर करके हम लोग vibrations में आए कि let's give positive vibrations to everyone. Let's take this dancing vibration कह लो या positive vibrations. Let's take this to our city. So इस तरीके से हम लोग और आज तक हम positive vibrations दे रहे हैं through our art, through our dance, through our words, through our positivity.
0: काफी यूनिक नाम आपने रखा है, मतलब सुनने को मिलता नहीं है ये नाम आसानी से कि कोई अपनी डांसिंग एकेडमी का नाम वाइब्रेशंस रखे।
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो मेरे यानी किरण के साथ में। तो जब स्वरोजगार की बात होती है तो महिलाएं तो आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। तो आज एक बार फिर मेरे साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर है जो न सिर्फ स्वरोजगार को उन्होंने अपनी जिंदगी से जोड़ा बल्कि दूसरों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ मैं शशि बहुगुणा रतूड़ी का, जो की फाउंडर है नमक वाली की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: धन्यवाद आपका।
1: कैसा लग रहा है आज आपको रेडियो पर आके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत
1: अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले स्वरोजगार की जब बात करते हैं तो नमक वाली का जो ब्रांड नेम है उत्तराखंड में, उससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर उत्तराखंड में है तो पिसा हुआ नमक हो, चाहे रोटाने हो और चाहे अरसे हो, ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे बचपन को हमें याद दिलाती हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो नमक वाली की कहानी कहाँ से शुरू हुई?
2: नमक वाली की जो कहानी है वो अभी हमारे 2018 से मैं एक वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन करती हूँ। तो उसी दौरान उसी सब चीजों की जो एक मेरा उत्तराखंड का जो फोक लोकगीत है उनकी मैं 8-10 महिलाओं के साथ में प्रैक्टिस करती थी रोज।
1: अच्छा।
2: और आज भी करती हूँ। तो उनमें से जैसे रेखा कुठारी है, सुशीला सेमवाल है, परमिला पांडे है, जो मेरे पूरी जो मेरी संस्था है जो मैं मतलब 1982 से काम कर रही थी, तो मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं थी। तो वही जो है नमक पीस करके लाती थी और मैं भी अपने सिलबट्टे पे बनाती थी।
1: अच्छा।
2: तो एक दूसरे को सब लोग टेस्ट कराते थे।
1: अच्छा।
2: तो उनमें से जो है रेखा कुठारी जब अपना ये सिलबट्टे का पिशू लोड लेके आई तो मैंने उसको जो है जैसे मतलब और भी कुछ महिलाएं थी तो उन्होंने क्या किया कि कल हमारे लिए लेके आना, कल हमारे लिए लेके आना। तो मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि हमारे लिए लेके आना है और ये सिलबट्टे पे इतनी मेहनत होती है और आज की जो बात कहें हम तो सारा हर घर में सिलबट्टा एक कोने में पड़ा हुआ है। सब लोग जो है आपके मिक्सी में चटनी बनाते हैं, मिक्सी में हर काम मिक्सी में होता है। तो मैंने उसको एक जैसे उसने नमक दिया तो मैंने उसको सब लोगों के सामने 100 रुपए दे दिया।
1: अच्छा।
2: कि आपका पारितोषिक है। और पारितोषिक है उसी दिन से मेरे मन में आया कि हमारा जो सिलबट्टा है वो सिलबट्टा एक कोने में बैठ करके रो रहा है कि मेरी कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। मैं इस सिलबट्टे से हमारे पूरे घर परिवारों में नमक पिसा जाता था, चटनी पिसी जाती थी और सब्जी नहीं थी तो चटनी रोटी लोग खाते थे, नमक रोटी खाते थे। वो सब समाप्त हो गया धीरे धीरे और हमारी पुरानी जो हमारी दादी नानी ये सब बनाती थी, माँ बनाती थी, वो खत्म हो चुका है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि इसको जो है नमक को हम एक छोटी सी पुड़िया बना करके ऐसे करके जैसे वो कैसे पेपर बोलेंगे उसको, खाकी रंग का पेपर होता है जो उस पेपर में उसको बना करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमने उसको डाल दिया। तो अब लोगों ने ऑर्डर किया उसका, अब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे लोगों को अच्छा लगे तो पूरे देश भर के लोगों ने वो छोटा सा पैकेट ही लेने शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
2: तो पैकेट लेने शुरू किए तो हमने एक महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ से बढ़ाया।
1: दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट है नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी.
3: ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख करके कुछ भी चीज करते हैं.
4: बिल्कुल.
3: हमारे जो अंदर से निकलता रहता है उसी पर हम काम करते रहते हैं
4: जी.
3: तो वो हमने एक शुरू कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से शुरू किया, तो उसके बाद तो इंडिया
4: आगे
3: ने
4: बढ़ता
3: गया. बैटरी इंडिया ने स्टोरी छाप दी और बहुत सारे जब बैटरी इंडिया ने स्टोरी छापी तो 300-400 कॉल एक दिन में आने लग गई.
4: अच्छा.
3: हाँ,
4: ऑर्डर्स की
3: पहले पूछने के लिए, फिर ऑर्डर भी हुए.
4: अच्छा.
3: लेकिन उनमें से कितने कॉल हम उठा पाते ये भी था. फिर धीरे धीरे करके आज वो जो है इतना अच्छा स्वरोज

0: दो घंटे नमक सिलबट्टे पे बनाती हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा रोजगार मिला।
1: अच्छा,
0: हमने नमक वाली ब्रांड तभी बनाया कि हमने वो पिशन लूण के हिसाब से जा रहा था, तो ये नहीं कि खाली हमारा नमक वाली है तो नमक जा रहा है, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं,
1: हाँ,
0: पड़ी हुई है, तो हमने उसका ब्रांड ही नमक वाली बना दिया और आज पूरे देश में जा रहा है, आगे जा करके हो सकता है बाहर भी जाए, हम उसका लाइसेंस, मतलब धीरे धीरे बाहर भी जाएगा, इनडायरेक्ट जब कोई जाता है बाहर तो वो लेके चला जाता है,
1: लेके जाता है। और ऐसे ही मार्केटिंग होती है चीज की, जब एक खाता है दूसरा खाता है, और शुरुआत भी देखो नमक वाली की ऐसी भी कि एक अपने घर से पिसा हुआ लून लेके आया, दूसरा लेके आया और सोचा, वहां से एक आइडिया जनरेट हुआ,
0: आइडिया, और जैसे घर में हम लोग भी खाते थे तो मतलब वो अपने आप ही जो है एक निकला कि इसको बाहर निकाला जाए, है ना, तो उसकी एक सिलबट्टे की एक बहुत बड़ी पहचान बनी। हमारा एक नमक वाली ब्रांड है लेकिन उसमें हमारे पहाड़ी मसाला है, पहाड़ी हल्दी है, हमारी ऑर्गेनिक दालें हैं, हमारे जो है जो भंजीरा होता है उसकी चटनी है, ड्राई अलसी है उसकी चटनी है, बद्री गाय का घी है, शहद है, तो उस माध्यम से हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और जो हमारे फार्मर हैं उनको भी एक स्वरोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है,
1: बहुत सारी चीजें,
0: बहुत सारी चीजें हैं,
1: और वो मैंने सारी देखी है, और हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में अपने जितने भी सुनने वाले हमारे लिसनर्स हैं उन सबको भी जरूर बताएंगे कि नमक वाली सिर्फ पिसा हुआ जो है नमक या लून नहीं देती है, वो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी देती है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के इस प्रोग्राम में अभी के लिए रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।

कभी बलून एक्सरसाइज की है? डंबल वाली की होगी, रोप वाली भी की होगी, लेकिन बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है ये मैं बताऊंगा। मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर हम कहानियां सुनाते हैं और जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप ही कीजिए जिंदगी बदलने की कोशिश। बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी आपको आपकी खुशियों तक ले जाएगी। हाँ, यही मेरा वादा है। हर कोई अपनी जिंदगी में ना खुशी चाहता है, ढूंढना चाहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से उसे कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ये सब कैसे होंगे, कैसे वो इन सब डील करेगा। उसे सिर्फ एक सच्ची खुशी ढूंढनी है और ये हर एक के दिल का एक गोल है ना। लेकिन सवाल है कि ये खुशी मिलेगी कैसे? हाउ आर वी सपोज टू इवन बिगिन लुकिंग फॉर इट?

0: इसी के चलते लोग हैं एक ग्रुप 30-40 लोगों का जो एक ग्रुप था उसे एक कमरे में सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाया गया। ये सेमिनार था अबाउट लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड लर्न टू फाइंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। उनको अलग अलग स्किल सिखाए गए, लेसन पढ़ाए गए लाइफ के बारे में। सडनली स्पीकर खड़ा हुआ, अपनी बात कहते कहते रुका और उसने हर एक शख्स जो वहां बैठा था उसको एक बलून दिया। कहा कि इस बलून पर एक पेन से अपना नाम लिख दो। सबने अपना नाम लिख दिया। सारे बलून्स कलेक्ट किए गए और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया गया, वो सारे बलून्स। अब जितने भी डेलीगेट्स बैठे थे इनका वो कोर्स कंप्लीट हुआ। इनको बोला गया कि अब एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको दूसरे रूम में जाना है और अपना बलून ढूंढ के लेकर आना है 5 मिनट में। सब लोग रूम में गए, सारे बलून जो थे वो रूम के बीच में रखे हुए थे, कौन सा किसका है किसी को नहीं पता था। तो सब लोग बस पागलों की तरह अपना बलून ढूंढने, अपना नाम जो था वो ढूंढने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। चारों तरफ क्योस हो गया, कोई भी अपने बलून तक नहीं पहुंच पाया। गिवन टाइम 5 मिनट में सब लोग अभी तक तो ये समझते रह गए कि उन्होंने किस पर लिखा था, कलर कौन सा था, ये वाला मेरा है क्या, ये वाला तेरा है क्या। फिर वो अपने कमरे में वापस आए लेकिन खाली हाथ। फिर जो स्पीकर था उसने कहा कि आप में से किसी को बलून नहीं मिला। अजी ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए इस बार तरीका बदलते हैं। अब एक काम कीजिए, उस कमरे में जाइए, कोई भी एक बलून लाइए, इस कमरे में आइए, इस कमरे में पूछिए कि ये बलून किसका है और उसको वो बलून दे दीजिए। सबको लगा कि ये शायद ज्यादा सिंपल है। वो गए, बलून उठाया, जिसका भी नाम था उसका नाम लिया, जिसका नाम आया उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसको बलून दे दिया। 5 मिनट में सबको अपने अपने बलून मिल गया और सब एक स्ट्रेट लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर उस स्पीकर ने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। एवरीवन इज फ्रेनेटिकली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, नॉट नोइंग वेयर इट इज। लेकिन हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियां, इट लाइज इन द हैंड और इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। आप उन्हें खुशियां दीजिए, यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस। आप उन्हें उनका बलून दीजिए, आपको आपका बलून मिल जाएगा। आप उन्हें खुशियां देंगे, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारी खुशियों की चाबी दूसरों को खुश करके ही मिलती है। जब हमारी फैमिली खुश होती है, दोस्त खुश होते हैं, बॉसेस खुश होते हैं, तभी तो हम खुश होते हैं। तो हमारी जो खुशी है दूसरों की खुशी पर डिपेंडेंट है। हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। ये बर्नार्ड मेल्जर ने कहा था, हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। चलिए फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। मैं हूं कहानी वाला रजत, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: This is Bookipedia, only on Walk Talk Radio.
1: Bookipedia में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है The Four Agreements और राइटर हैं डॉन मिगुएल रुइस। राइटर इस बुक में कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को बचपन से ही उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके भाई बहन, उसके यार दोस्त या बुक्स से और टीवी से या मैगजीन्स के थ्रू वो जो भी इम्प्रेशंस लेता है, यानी कि जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको पूरी तरह से मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। यानी उसे एक तरह से उन सब बातों के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट को करने की वजह से उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से कई बार करप्ट हो जाते हैं, जिनको वो एडल्ट होने के बाद भी, यानी बड़ा होने के बाद भी पूरी तरह से जीता रहता है, क्योंकि उसके माइंड की टेप में वो ही रिकॉर्डिंग्स करी गई हैं। तो राइटर कहते हैं कि कई बार इन सारे निगेटिव प्रोग्रामिंग्स की वजह से हम लोग एक तरह के हेल में जीना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हमको इस बुक के अंदर चार ऐसे एग्रीमेंट्स बताए हैं कि अगर हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम उस हेल से निकलकर हेवन की तरफ जा सकते हैं। यानी कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारी जिंदगी स्वर्ग की भांति हो सकती है। इनका फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यानी हर वो शब्द जो आप किसी और से कहते हैं या वो शब्द जो अपने मन के अंदर आप अपने आप से कहते हैं किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर, अगर वो शब्द जो आप अंदर से चाहते हैं, महसूस करते हैं और जिस तरफ जाना चाहते हैं उसके साथ हार्मनी में नहीं है, यानी उससे अपोजिट है, तो वो इम्पैकेबल नहीं है। इम्पैकेबल का एग्जैक्ट अर्थ है विदाउट सिन, यानी पाप रहित। लेकिन पाप रहित हमारे लिए क्या हो सकता है? पाप रहित इनके हिसाब से वो चीज है जो भी आपको अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाता है। यानी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इम्पैकेबल नहीं है। तो आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक मैजिक स्पेल की तरह से हैं। इनका कहना है कि आप एक तरह से किसी आदमी के बारे में निगेटिव अगर बोलते हैं तो आप एक तरह से एक निगेटिव स्पेल दे रहे हैं उसको, यानी आप उसके ऊपर एक काला जादू कर देते हैं। तो अपने शब्दों के चयन में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है तो हम इस पहले एग्रीमेंट को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सेकेंड एग्रीमेंट जो इन्होंने बताया है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात हमको लगती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम में से कोई भी आदमी चीजों को पर्सनल लेने में एक एक्सपर्ट है। आप एक कल्पना करके देखें, कोई एक इंसान जो सुबह उठता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, उसके उस दिन लॉटरी लग जाती है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, तो वो बहुत खुश है। शाम को अगर वो आपके साथ बात करेगा तो आप सोच सकते हैं वो आपको किस तरह से ट्रीट करने वाला है। लेकिन हम एक दूसरा सीनेरियो देखते हैं कि अगर वही आदमी सुबह उठते ही उसको पता चलता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसका एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे डिच कर देती है, तो वो किस तरह की मनोदशा में होगा और वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा? यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों ही परिस्थितियों में आप सेम हैं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस स्थान उस इंसान के साथ क्या चल रहा है ये बात आप बहुत भली बात ही समझ चुके हैं। तो इनका जो सेकंड एग्रीमेंट है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इनका तीसरा एग्रीमेंट है डोंट मेक अज्यूम्पशंस। जी हाँ, ये कहते हैं कि आपको कुछ भी मान ही नहीं लेना चाहिए अपने मन में किसी भी चीज के बारे में। आपको अगर अज्यूम्पशन से बाहर आना है तो आपको क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए और आपको बहुत बोल्ड होना चाहिए इस मामले में कि आप तब तक क्वेश्चंस पूछें दूसरे आदमी से जब तक कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि आपको कुछ भी अज्यूम करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस ऐसी आती हैं, मैं देखता हूं कि उसमें 90% प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में एज्यूम करके चलते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो हमें प्यार नहीं करता या वो हमारे खिलाफ हर समय सोचता रहता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज्यूम्पशंस होती हैं। तो आप सोचिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं जब एक छोटी सी घटना घटती है और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिवली उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम उसको इतना इनलार्ज कर देते हैं एज्यूम कर करके कि हम खुद ही उसके बोझ के तले दब जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी एज्यूम करने से पहले इस थर्ड एग्रीमेंट को समझ लेना है, याद कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इनका जो फोर्थ एग्रीमेंट है वो बहुत ही कमाल का एग्रीमेंट है। ये कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। जो शुरू के तीन एग्रीमेंट्स हैं, यानी बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अज्यूम्पशंस, ये तभी काम करते हैं जब आप ये फोर्थ एग्रीमेंट को, यानी ऑलवेज डू योर बेस्ट को, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, मैंने एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी, टॉम पीटर्स की कोटेशन थी। वो कहते हैं कि एक्सीलेंस इज द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फॉरगेट द लॉन्ग टर्म, मेक द नेक्स्ट 5 मिनट्स रॉक। इस कोटेशन ने मेरे को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको लंबा नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी लाइफ में इस पल से आने वाले 5 मिनट को आपने एक्सीलेंट बनाना है और आपकी पूरी लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगी। ये कोटेशन पूरी तरह से इनके फोर्थ एग्रीमेंट को कंप्लीट करती हुई दिखती है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब बुकीपीडिया में द फोर एग्रीमेंट्स। हम कोशिश करते हैं कि बुकीपीडिया के अंदर हम बहुत कम समय में आपको किसी भी एक किताब के कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे लेसन्स दें जिनको अपनी लाइफ में इमीडिएट उतार कर आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकें। आप सुन रहे हैं बुकीपीडिया वॉक टॉक रेडियो पे, मैं गिरेंद्र भारती, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो।

ये है इंडिया का पहला मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। मेरा नाम है मैंडी और देखिए खुशियों के बाद एक अलग सी जो एनर्जी हमारे सबके अंदर आई है वो बहुत ही कमाल की है, बड़ी बेमिसाल है। तो इसी के साथ अनसुने किसे शो की हो चुकी शुरुआत। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके अंदर इतनी गहराई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दी जाए कि जिंदगी में कुछ भी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके मेरे आसपास हो, आपको भी घबराए ना, वो ज़रूरी भी है। और बस यही वॉक टॉक रेडियो का एक मकसद है। और उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता हमें पसंद करते हैं अपना फीडबैक ज़रूर देते होंगे। चलिए ज़रा सी देर में शो की शुरुआत करते हैं।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूं दून की नौनी आरजे शिवांगी और शो चल रहा है सिटी टॉक्स। तो आज ना जब मैं घर से ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको पुलिस ने रोका हुआ था। अब मुझे लगा कि पुलिस चलान वलान तो काट रही है, लेकिन किस चीज का काट रही है। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने आगे जाकर एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। एंड सच बताऊं, ये मास्क पहनना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मतलब आए दिन लोग ऐसे ही घूम रहे, कोरोना को इतना लाइटली ले चुके हैं कि क्या ही बोला जाए। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग तक का तो दूर दूर तक पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या ही बोले, कभी आप मार्केट की साइड निकल जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो फ्री फंड में एक और एडवाइस मैं आप सभी को देना चाह रही हूं कि आप जहां भी जा रहे हैं मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर का रेगुलरली उपयोग करें, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो भाई पालन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना भैया है ना, ये वापस दस्तक दे चुके हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि वापस से आप सभी के सब घर पर बैठ जाएं, तो प्लीज ये सारी गाइडलाइंस का ढंग से पालन कर लीजिए। तो फिलहाल मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट, लीजिए सुनिए अमेजिंग सा ट्रैक और बने रहिए मेरे यानी दून की नौनी आरजे शिवांगी के साथ ऑन शो सिटी टॉक्स पर, ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुंच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजी

0: दुनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती हैं कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5-6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती हैं कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। Did you know that? ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइएगा। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर। वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूँ कहानी वाला बजट, ये है मेरा शो सफरनामा। वॉक टॉक
1: रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ में किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं, अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है।
और हमारे यहाँ क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो, का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. वॉक टॉक रेडियो.
1: टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऐसा लड़का देख कर ना मन करता है बस एक बार मिल जाए ये. सो वैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे चैंपियन की कहानी आपको बताई जाए जिसे सुनकर आपको भी मजा आए. आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ, और मैं हूं अनसंग चैंपियंस के साथ मुस्कान आपके साथ. खेलों की बात हम जब करते हैं तब सबसे पहले हम उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पुलेला गोपीचंद के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 16 नवंबर को और प्रकाशम जिले में, जिसका नाम प्रकाशम था लेकिन पुलेला गोपीचंद ने वहां पर असली में प्रकाश फैला दिया था. उन्होंने एक्चुअली सिर्फ प्रकाशम में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया था. 1991 में जब उन्होंने खेलना शुरू किया इंडिया के लिए, तब सबसे पहले मलेशिया के लिए वो खेलने गए थे, मलेशिया के खिलाफ एक्चुअली. उसके बाद तीन बार 1998 और 2000 में थॉमस कप में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया. अनेकों बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था उन्होंने. टूर्नामेंट में विजय हासिल कर भारत को गौरवान्वित तो महसूस कराया ही, उसके अलावा 1996 में विजयवाड़ा में सार्क टूर्नामेंट में और 1997 में कोलंबो में गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो. कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत कड़े मुकाबलों के बीच भी रजत और कांस्य पदक जीते थे उन्होंने. 1997 में दिल्ली में ग्रैंड पिक्स मुकाबलों में उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी और सबसे अच्छे खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था उन्होंने. आपको पता है कि फाइनल में वो हार गए थे, पर खेल में यही तो मजा है, कभी हार तो कभी जीत. 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए अकेले इंडियन प्लेयर थे पुलेला गोपीचंद. आपको पता है प्रकाश पादुकोणे के रिटायर होने के बाद इंडिया में कोई बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था. जब पुलेला गोपीचंद सामने आए तब सबको इनसे इतनी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि यही बस नाम रोशन करेंगे. और लास्ट में प्रकाश पादुकोणे के बाद आगे बढ़कर चमकने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी सिर्फ पुलेला गोपीचंद ही है. वो देखने में बहुत अच्छे तो लगते ही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉट हैं, हैंडसम हैं, बहुत टॉल हैं, उनकी हाइट है 6'2". मतलब लड़कियों को अक्सर लंबे लड़के बहुत पसंद होते हैं. 2000 में ऐसा हुआ था कि पुलेला गोपीचंद थॉमस कप में फाइनल में पहुंच गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया जो है खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है. फिर जब गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड खिताब जीता 2001 में, तब लगने लगा था कि मानो हम चांद तक पहुंचने वाले हैं. मतलब सीढ़ी मिल गई है हमें, पुलेला गोपीचंद वही सीढ़ी थे. अब हमारे उस टाइम पर 6 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में थे. टॉप 100 में 6 प्लेयर्स इंडिया से थे. और आपको पता है पुलेला गोपीचंद 2001 में 4th रैंक पर थे. मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि बस यार हमसे ऊपर कोई है ही नहीं. उन्होंने 2001 में चीन के चैन होंग को फाइनल में 15-12 और 15-6 से हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी. इस तरह से प्रकाश पादुकोणे के बाद इस जीत को हासिल करने वाले वो सेकंड इंडियन बन गए थे. मतलब आप सोचो, वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो गया है और आप भारत में दूसरे नंबर पर हो. पहले नंबर पर प्रकाश पादुकोण थे और 1980 में उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी प्रकाश पादुकोणे ने. और उसके बाद 2001 में नाम आया पुलेला गोपीचंद का. उन्हें 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत इफेक्ट पड़ा और 2003 में उनकी रैंकिंग गिरकर 126 पर आ गई थी. 2005 में उन्हें फिर से सम्मानित किया गया था. उन सबके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, पर अभी ये बता देती हूं कि गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी चलाते हैं. अब वो एक जाने माने कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है. और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आज भारत में नाम रोशन कर रहे हैं. उन प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं? आई एम श्योर जानते होंगे. साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इन दोनों की अगर कोचिंग की बात की जाए तो वो पुलेला गोपीचंद ने ही दी है. लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है. जब वो खेलों में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी अकेडमी खोलूंगा. लेकिन वर्ल्ड क्लास एकेडमी खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी जरूर बताएगी मुस्कान आपको। सुनते रहिए अनसंग चैंपियंस, जिसमें आप मुझे यानी कि मुस्कान को सुन रहे हैं और आज मैं आपको बता रही हूं पुलेला गोपीचंद की कहानी। एक ऐसा चैंपियन जो एक टाइम पर टॉप 5 में था पूरे वर्ल्ड में और फिर धीरे धीरे कहानी बदलती चली गई। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना तय है, जीना इसी का नाम है। आप मेरे सुरों पे मत जाइए, मुझे पता है मैं बहुत बेसुरा गाती हूं, लेकिन जज्बातों को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप थोड़ा सा डाउन है तो ट्रस्ट मी कल आप टॉप पर हो सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मुस्कान विल बी हियर बस थोड़ी ही देर में।

जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पे भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं

अगर हम उसके लिए एक काम भी करते हैं ना, एक बदलाव भी अगर हम अपनी तरफ से लेकर आते हैं, तो बड़ा प्राउड हमें फील होता है। बशर्ते कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की हो तो हमें प्राउड होगा, या तो हम उस फीलिंग को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो फीलिंग क्या होती है। कभी किसी आर्मी पर्सन से, किसी पुलिस फोर्स के जवान से, या फिर किसी भी इंडियन फोर्स के जवान से आप ये बात पूछिएगा। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ये बात पूछेगा जो हर पल अपनी जिंदगी का हर क्षण, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है। फैमिली उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो हमारा देश है वो उनके लिए उनकी फर्स्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में आते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो बचपन से ही एक सपने को लिए जीते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है। कई सारे लोग शायद टीवी पर देखकर उन सपनों को जीते हैं, वहां से इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है कि मुझे भी ये करना है। हो सकता है कि किसी ने अखबार में किसी को देख लिया हो और उसने सोचा हो कि मुझे ये करियर चूज करना है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे माहौल में पैदा भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जहां पर उनके अंदर एक जज्बात समा जाते हैं कि मुझे तो बड़े होकर इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इंडियन आर्मी का। तो कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी महान पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने न सिर्फ सेना को अपनी परवरिश में जिया है, बल्कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी कि जब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की, जब बात आती है करियर चूज करने की, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि उनको इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जाना है, फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी। वेल, मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि हाल ही में उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी है, वो एक फिल्म के जरिए कुछ घंटों में हमें दिखाएगी। लेकिन आज कॉल फॉर ड्यूटी में मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर उनको याद किया जाए, क्यों ना उनकी जिंदगी में थोड़ा सा फिर से झांका जाए और याद किया जाए उनके उन वीर पलों को जो उन्होंने बिताए और हमेशा के लिए हमारी देश की झोली में डाल दिए। तो आज कॉल फॉर ड्यूटी पर मैं बात करने जा रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है, अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जिक्र ना करें तो वो पूरी की पूरी बात ना बिल्कुल अधूरी होती है। और आज हम करने वाले हैं ऐसी ढेर सारी बातें कारगिल युद्ध के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मेरे यानी किरण के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी। 9 सितंबर 1974 का वो दिन जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर दो बेटियों के बाद जन्म हुआ दो जुड़वा बच्चों का। कमला कांता जी और जो मिस्टर बत्रा थे, उन दोनों की ही श्री रामचरितमानस में बेहद ही गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने इस चीज को देखते हुए अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बच्चे बड़े हुए तो उनको स्कूल में डालना था। सबसे पहले डीएवी स्कूल के साथ उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में उनको एडमिशन दिलाया गया। अब स्कूल जो है वो सेना छावनी में था, यानी कैंट एरिया में था। तो स्कूल से घर आते जाते कई बार ऐसा होता था कि जो सेना के जवान हैं उनसे वो बेहद ही करीबी से मिलते थे, या फिर ये कह लीजिए कि बेहद करीब से उनको जाते आते देखा करते थे। कई बार वो अपनी परेड कर रहे होते थे, तो कई बार कुछ काम कर रहे होते थे, कई बार वो भाग रहे होते थे, तो कई बार वो किसी अर्जेंट काम के लिए बड़ी जल्दी में दौड़ लगा रहे होते थे। ये सब देख कर विक्रम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उन्हें लगता था कि सेना की लाइफ में कितनी ज्यादा देशभक्ति है, कितनी ज्यादा डेडिकेशन है, कितनी ज्यादा ऑनेस्टी है, और यही ऑनेस्टी, यही डेडिकेशन, यही एक्टिवनेस विक्रम को अपनी तरफ बस खींचे चली जा रही थी। और साथ में ये सारी चीजों को और बढ़ावा मिलता था जब वो टीवी पर कोई भी सेना से जुड़ा हुआ सीरियल देखते थे या फिर फिल्में देखते थे। उनकी वीरता की कहानियां जब वो सुनते थे तो ये सब उन्हें बहुत पसंद आता था। यानी कि ये सीरियल्स, ये फिल्में, ये कहानियां जो वीरता की थी, सेना की वीरता की थी, ये उनकी फेवरेट हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, विक्रम की अगर फेवरेट ड्रेस की बात की जाए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको वो किसी भी स्पेशल मौके पर पहनना चाहे, तो वो शायद किसी भी भारतीय फौज की ड्रेस होगी। यानी कि जो भी उनकी वर्दी है वो उनकी फेवरेट हुआ करती थी। विक्रम स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई में हमेशा टॉप किया करते थे, बल्कि स्पोर्ट्स में भी उनकी बड़ी रुचि रहा करती थी। स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस में वो हमेशा टॉप के खिलाड़ियों में आते थे। वहीं कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो उसमें भी वो कभी पीछे नहीं रहे, हर जगह वो एक्टिव रहा करते थे। और यही एक्टिवनेस थी जो उनको सेना में जाने का जज्बा भरती थी। अब विक्रम का 12th कंप्लीट हुआ और उसके बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCCA एयर विंग में शामिल हुए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें NCC में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने NCC कैंडिडेट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट उनके लिए था। या मैं यूं कहूं कि सेना में जाने की जो ख्वाहिश उन्होंने अपने बचपन से अपने मन में दबाई हुई थी, उसका पहला पड़ाव वो चढ़ रहे थे। फिर 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी चुनने का ऑफर आया। अब मर्चेंट नेवी में भी कहीं ना कहीं आप कर तो देश के लिए ही काम रहे हैं, लेकिन फिर भी विक्रम के मन में एक उलझन थी कि उन्हें तो इंडियन फोर्सेज में जाना था, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में। और ये जो मर्चेंट नेवी का ऑप्शन उनके पास आया, उसको नकार कर कहीं वो कोई भूल तो नहीं करेंगे, और अगर उसको चूज कर ले तो कहीं उनके मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने का जो ये ऑप्शन उन्हें मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1995 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इंग्लिश में MA करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। अब धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट होने जा रही थी और मन में जो सपना बचपन से पाले हुए थे कि सेना का हिस्सा बनना है ऑफिशियल तरीके से, NCC से अब उनको इंडियन फोर्सेज में दाखिला लेना था, इंडियन फोर्सेज का हिस्सा बनना था, उसको कैसे पूरा किया जाए, एक मौके की तलाश में वो थे कि जैसे ही वो मौका आएगा जी जान लगा देंगे। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, ताकि फिजिकली, मेंटली और नॉलेज की तरफ से भी कोई कमी उनकी ना रहे। सेना में कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से सन से इसकी शुरुआत हुई, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर कॉल फॉर ड्यूटी में मेरे यानी किरण के साथ।
1: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow, it's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स। सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशन वगैरह दोगी, यू नो, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना, वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक बार फिर मैं अपने बहुत ही दो इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में आप सभी के साथ आई हूं। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। और क्यों लगते हैं ना, वो तो अभी जब आप भी सुनोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साथ ही वाटर कायकिंग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग भी करते हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के हैं। तो आज बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डोलमा का, यानी कि सुनीता श्रेष्ठा का, और साथ में उनके हस्बैंड मेरे साथ है जिनका नाम है सोनम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और सच बताऊं तो पहले ना मैं बड़ी आज टायर्ड सी फील कर रही थी किसी वजह से, लेकिन जैसे ही आप लोगों से मिली ना मेरी सारी थकान चली गई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं ये बात बोल रही हूँ, और अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। तो मैं आपके बारे में जो है खुद बताऊं, इससे अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि सोनम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अभी तक की आपकी जर्नी जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है, क्या कुछ क्या स्टडी किया, कहाँ कहाँ से होकर आए हो।
2: मेरा नाम सोनम है और मैं रहने वाला वैसे हरसिल उत्तरकाशी से हूँ। और यहाँ देहरादून में मैं पिछले 5-6 सालों से यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ एज अ अकाउंटेंट। और मैं 9 to 5 जॉब के अलावा साइकिलिंग करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर रिवर कायाकिंग एंड स्कीइंग भी करता हूँ इन विंटर सीजन। इसके अलावा अपनी जर्नी के बारे में मैं बताऊँ तो साइकिलिंग मैंने शुरू की थी 2019 से, जस्ट कोविड उस टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था। तो ऑफिस से भी मतलब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा ही बिल्कुल बंद था, लाइक करने के लिए कुछ था नहीं, घर बैठो सब। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ करना चाहिए घर बैठे बैठे, तो साइकिलिंग मैंने वहां से शुरू की। देन देखते ही देखते मैं मतलब साइकिलिंग का इतना मेरे को शौक और इतना मतलब मुझे साइकिलिंग इतना पसंद आया कि मतलब कब मैं देहरादून से लद्दाख इन साइकिल, मैंने
0: साइकिल में
2: या
0: टोटली
2: साइकिलिंग।
0: ओह माय गॉड,
2: मैं देहरादून में कह सकता हूँ मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो देहरादून से जिसने साइकिलिंग स्टार्ट की और पूरी लद्दाख तक कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा था कि यार मेरे को मतलब जिस हिसाब से डिस्टेंस है लाइक 1400 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार पूरा महीना तो मेरे को लगेगा। बट जब मैंने शुरू की तो कब 12 दिन में कंप्लीट हो गया मुझे पता नहीं चला।
3: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
4: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
5: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं मेरे गाने Walk Talk Radio पर। Tune in for a better life.
1: अच्छा अब डोलमा आपकी बारी, आप बताइए कि आप क्या करते हो और आपकी अभी तक की क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की।
2: मेरा नाम सुनीता श्रेष्ठ है
1: जी,
2: एंड मुझे डोलमा कह के ही ज्यादा जानता है यहाँ भी और नेपाल में भी
1: जी।
2: वैसे मैं नेपाल से हूँ, बिलोंग वहीं से करती हूँ, बट अभी मेरा शादी हुआ है यहाँ पर।
1: हाँ।
2: तो यहाँ हूँ मैं, कब से हूँ, 2 साल होने वाला है।
1: 2 साल होने वाला।
2: हाँ। तो मेरा साइकिलिंग जर्नी, साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेकिंग गाइड थी।
1: ओके।
2: और ट्रेकिंग में मुझे पता चला कि नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे उसी, जब मैं ट्रेकिंग करने लगी तब पता चला मुझे
1: जी।
2: एंड हम ह्यूमन बींग्स है तो हमें फन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है।
1: हाँ, हाँ।
2: फिर मुझे, मेरी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है एक इवेंट।
1: अच्छा।
2: नेपाल में काठमांडू कोरा करके, तो वो जून जुलाई में होता है वैसे। तो वो मेरी अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ओके मैं भी करती हूँ।
1: ओके।
2: बिकॉज ये वाला ज्यादा फन लग रहा था। मैं आउटडोर पर्सन के अलावा स्टूडेंट थी घर पे। फिर एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट्स वाला जर्नी वो मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ है।
1: अच्छा।
2: मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी और मैं स्टेट में सेलेक्ट हुई थी वॉलीबॉल के लिए। तो वहीं से मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट हुआ। फिर रनिंग, लॉन्ग जम्प ये सब में तो मैं अच्छी खेलती थी उस टाइम।
1: हाँ,
2: में
1: हाँ, हाँ,
2: फिर उसके बाद थोड़ी सी, हमारी नेपाल में 10th क्लास को SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट।
1: अच्छा।
2: हाँ, नेपाल में वो होता है। तो 10th क्लास के बाद हमें 3 मंथ्स का हॉलीडे मिल जाता है।
1: ओके।
2: हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुद को पुश करना पड़ा कि लाइक डोलमा यू शुड गो आउट एंड इंडिपेंडेंट होना है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम, दिस थिंग्स आर रियली हार्ड टू एक्सप्लेन, यू नो, लाइक हम एक गांव से होता है एंड वहां पर स्पोर्ट्स ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है।
1: हाँ।
2: एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था। मुझे ये चीज से लगाव हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स को ये, उनको मंजूर नहीं था। दे वर लाइक टोटली अगेंस्ट मी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, संस्कारी,
1: पढ़ लिख

0: घर का काम, जॉब कर लूँ, फिर शादी भी कर
1: लूँ. बट वो मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया. तो मैं टोटली थोड़ी सी उनके साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी. फिर मैंने पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ओके, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है.
0: मैं खुद से कुछ करूंगी.
1: मैं खुद से करूंगी. फिर वो 3 months हॉलीडे में मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू मामा के घर.
0: अच्छा.
1: बट एक्चुअली मैं काम करने जा रही थी.
0: और उन्हें पता चला फिर? नहीं पता चला.
1: उन्हें नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रही थी काठमांडू. एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि घर से निकल के कहीं भी जाऊं. जितना क्वेश्चंस हमें होता है उतना हमारे ब्रदर्स को नहीं होता है, भाई भैया को नहीं होता है. तो मेरे लिए वो स्टेप लेना बहुत मुश्किल था एंड बहुत जरूरी भी था. फिर मैं काठमांडू आई तो वहां पर मुझे हमें ये लगता था कि ओके, काठमांडू में जाके हमें हमारा करियर बन जाएगा. इट्स लाइक काइंड ऑफ यू नो, यहाँ इंडिया में
0: अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ज्यादा,
1: दिल्ली दिस ऑल थिंग्स. वैसे ही नेपाल का काठमांडू है उस टाइम.
0: अच्छा.
1: तो मुझे बस ये फील हो गया था कि मुझे कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है. फिर काठमांडू पहुंची मैं एंड हमारे बहुत दूर का रिलेटिव्स है वो लोग. फिर मैं उनके साथ रही. एक्चुअली मेरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मामा घर जाऊं, पर मैं नहीं गया क्योंकि उनके घर जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी कहीं.
0: वो भी नहीं जाने देंगे.
1: हाँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस. तो मुझे वो नहीं चाहिए था. मुझे बस अपने काम करना था, काम ढूंढना था फर्स्ट थिंग. तो काठमांडू गई, उनके साथ रही. फिर कोई पहचानने वाला भैया, उनको मैंने बात किया कि आई वॉन्ट टू वर्क. तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एजेंसी में इंट्रोड्यूस करवाया.
0: अच्छा अच्छा.
1: फिर नेपाल में इतना आसान नहीं है वो. जो हम एक बार टूरिज्म में लोग कोई भी जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हमें हायर करता है तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है. तो ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चला. तो उन्होंने मुझे बुलाया, लाइक डोलमा ऑफिस आओ, बातें सुनो. एंड यू नो, लाइक वो बातें सुनने के लिए मुझे 3 घंटा वॉक करके जाना पड़ता था वो जगह से. एंड मैं 8 बजे जाती थी क्योंकि मुझे सुनना था, मुझे सीखना था, सीखना पड़ता था. एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कंपनी, यू नो, लाइक ना ज्यादा
0: कंफ्यूजन. कंफ्यूजन.
1: एंड स्टिल मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था.
2: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो. एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। जिसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितने की ज़रूरत है वहाँ पर। आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

0: हाय दिस इज शाहिद माल्या, सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छट के बस तेनू ही है चुने।
2: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

0: रेडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी। क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको एज ए एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो उस काम को कभी न छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो।

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: अब शायद ही कभी मिलना हो, ये जानते हुए भी वादे सबने बहुत किए स्कूल फेयरवेल में कि मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे। आज इतने सालों बाद सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, लेकिन एक चीज जो आजकल किसी के पास नहीं है वो है टाइम। मिलते हैं यार किसी दिन, लेकिन वो किसी दिन आता नहीं है। तो दोस्त, किसी को तोहफे में कुछ देना है तो मिठाई, कपड़े, घड़ी, ये सब नहीं, अपना टाइम दीजिए, अपना कीमती समय दीजिए। समय से ज्यादा कीमती आजकल कुछ भी नहीं है।
1: Tune in for a better life.
2: ये है Walk Talk Radio.
3: Walk Talk Radio.
2: Tune in for a better life. Tune in.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
0: वॉक टॉक रेडियो.
3: इस कॉम्पिटिटिव दुनिया की भीड़ में अगर आप भी अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, तो इन शब्दों को बार बार जरूर अपने मन में दोहराइए कि आप अमेजिंग है, आप इम्पोर्टेंट है, आप बहुत स्पेशल है, आप यूनिक है, आप बहुत ही काइंड है, आप बहुत ही अनमोल है. आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
1: इस बेहिसाब जिंदगी में हिसाब देना भी जरूरी है, गैरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना भी जरूरी है। माना कि हालात कभी कभी बेकाबू से हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और कुछ राहों में छूट जाते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कभी कभी ये भी हम सोच नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये पल भी तो गुजर जाते हैं और वक्त भी तो बदल जाते हैं। दुखों के बाद खुशियों के पल ही आते हैं।

0: रेडियो।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवन जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. हाय, मैं हूँ अनुष्का. आई एम अ सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड रैपर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर.
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो.
3: वॉक टॉक रेडियो.

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानी आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे बताया जाता है कि 11-12 फ्लॉप फिल्में आने के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जंजीर, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो गए थे रेडियो जॉकी बनने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या 80s के दौर का वो महानायक 90s आने के बाद अचानक से अपनी जगह बचाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। आप मानिए ना मानिए, एक वक्त ऐसा था जब बच्चन साहब ने अपने घर से यश चोपड़ा जी के घर तक, जो उनके पड़ोस में इलाका करते थे उस समय, नंगे पांव जाकर उनसे काम मांगा था। कहा था कि मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दे, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेडरिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, रोना आ रहा था। हाथ से चीज फिसल गई, आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें, तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता इसलिए वो चीज नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण कब पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है। याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है उसे हैंडल करना है तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई, बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोठिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। शो चल रहा है कहानी वाला, और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना, तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहां वहां हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं, लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी, किसान की घड़ी की कहानी, सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को घड़ी मिली थी ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख, मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है, और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी, जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी, उसके पापा ने, वो खो गई। और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, स्कोटी का हर कोना कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहां बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढने। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की

किसान ने कहा ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ, उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगी, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंचकर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगे जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। दो मिनट रुककर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्र चित्त वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वे टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं?
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें

कभी कभी कुछ बातें जो किस्से कहानियों में नहीं समझ आती हैं, वो शेर शायरी कविताएं समझा देती हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किस्से कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी है। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं, उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया था। जब डीएल

क्लिफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मनी अप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कॉम्पिटिशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है कैसे हिंदुस्तानी पर जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में है अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है वॉक टॉक रेडियो, Tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद

0: की होगी ना, कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुँचते हैं, उस स्टेज पर पहुँचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
1: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage, right now.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए हैं, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, और कहानियां सुनाना मेरा काम है, ये तो जानते ही हैं आप। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नजर हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने, पापा एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओ, 500 रुपए? तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला,

पापा, आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं बस। जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई। उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना, ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर गुस्सा हो गया। बोले, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब हैं। ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए। ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे, और काम मत करना कम से कम उसे 1 घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे। हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है। हमारे पास अपने फैमिली, हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम? सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ। बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए। वॉक टॉक रेडियो पर ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: जब भी आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा ठहर जाना, एक लंबी सी गहरी सांस तुम लेना, अपने अच्छे से अच्छे वक्त को उस वक्त तुम याद करना, अपनी मंजिल को तुम याद करना, खुद से वादा तुमने जो किया है उस वादे पर ध्यान करना। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, बस इरादे पक्के होने चाहिए। इसलिए जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा खुद के बारे में जरूर सोचिएगा।
1: दादी मिल गई
2: से।
1: मतलब ये उन लोगों में से है।
2: कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
3: मैं आपको समझता हूँ। सब कैसा ही होगा।
4: लड़के ना लड़की वगैरह।

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग, इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखें चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल ये हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां पर वो चिकन बनाते थे वहां रुकता था वो उनका चिकन

जरूर खाता था। अब तब वो पॉपुलर तो हो रहे थे पर उनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। चिकन की क्वालिटी ऐसी कमाल की बनाने लगे, उनकी बिक्री बढ़ने लगी और फिर वो 142 सीटर होटल के मेन शेफ बन गए। तब ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर उन्होंने चिकन पकाते पकाते ना एक नया तरीका इजाद किया, जैसे प्रेशर फ्रायर चिकन कहने लगे लोग। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस शख्स ने अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले कई बार हाथ पांव मारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका आया, एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मनाकर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी इजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी ये रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए, तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 रिजेक्शंस झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई तब, मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था। कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है, आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंटकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंटकी फ्राइड चिकन की। केंटकी को KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

नशीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत तका, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती छिपकों में अपनों को, बंद कमरों में बैठा के देता हूँ गर्मों को, कुछ शर्तों पे रहना होता लड़कों को, कहते कि दर्द नहीं होता सारे मर्दों को, पर वो रोते अपने खोके, मिलते धोके आते जोके पर ना सोते क्यों, तुझे क्या तू तो मेरी होके यू, मैं किस वफा की उम्मीद रखूं, तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता, काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता, काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ।

0: Radio.
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: screaming for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
3: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाली एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गांव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री जी जिद्दी थी कि उन्हें पढ़ना है, तो उन्होंने घर पे खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। अपनी एक कजन सिस्टर जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, उनसे बुक्स लेके बछेंद्री घर पे खुद से पढ़ाई करती थी। उनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने और अपनी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए वो 5-5 रुपए के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके गांव में उनके जानने वालों का कुछ भी नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिली। कोई बताने वाला तक नहीं था कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए, और उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था। बछेंद्री जी भी बढ़ रही थी डॉक्टर बनने की तरफ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनका इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। वो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स चैंपियन थी, और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया, और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एमए बीएड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास, और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बचेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थीं और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग उन्हें ताने सुनाने लगे। पिताजी की तरफ से उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पसंद था उनका ऐसे पहाड़ों पे जॉगिंग जाना, लोगों के ताने सुनना। इसलिए कोई ये ना बोले कि बछेंद्री टाइम वेस्ट कर रही है, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ चुन के ले आती थी। इससे दोनों काम हो जाते थे, उनकी प्रैक्टिस भी और घर का काम भी। बछेंद्री काफी जिद्दी थी अपने गोल्स के लिए। जैसे उन्हें पढ़ाई पूरी करनी थी वो उनका पहला गोल था, वो पूरा करके दिखाया। फिर उन्हें एवरेस्ट पार करना था, वो भी पूरी लगन के साथ कर रही थी। लाइफ में ना आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चली जाती है। जैसे ही आप उसे जाने देते हो और फोकस शिफ्ट करते हो तो वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बछेंद्री के साथ। जैसे ही प्रैक्टिस का थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, उनको आया टाटा से जॉब ऑफर। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उनके छोटे से गांव में ऐसा ऑफर आना, वो भी किसी लड़की के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। गांव की तरफ से जो सोशल प्रेशर पड़ रहा था उस पे रोक लग गई थी। फिर उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग सुनी। निकल पड़ी बछेंद्री एवरेस्ट के सफर पे। चढ़ते हुए भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ का एक एवरेस्ट पार कर चुकी थी, पढ़ाई करके, जॉब करके। तो इस एवरेस्ट को पार करने के लिए उनमें पूरी क्षमता थी। एवरेस्ट चढ़ते समय एक बार आधी रात को उन्हें एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे दब गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपनी साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था ये सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के हर उस सिटीजन के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, उन सब के लिए एक मिसाल बनी बछेंद्री पाल। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हम हमेशा उपवास रखते हैं खाने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स मत करिए, अपने मन को भी करिए। अपने दिमाग से जो आपके बेकार थॉट्स हैं, उनको भी निकालिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

फ्लक साथी बनूं या तेरा राकेट, बसालू तुझको जो तू अब समा गई है आके। दीवानी तू है मगन हूँ मैं भी इसमें शामिल, दिया है सब कुछ पर कर ना पाया कुछ भी हासिल, ना हो कुछ टचवुड वो भी जाए तो ठहरे कातिल, था मेरा सब कुछ अब आंसू।

बातों से डरे, उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही। बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरे

मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे। तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे न ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक

स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं, तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतनी प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा की इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गईं। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा वहाँ 6th पोजीशन पे आईं। जाहिर सी बात है वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा 6th आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर 6th आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो, तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। उस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी
और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड ला के दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ले, पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ले और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा, क्योंकि जो भी हो कर्म हमेशा लौट कर आता है। और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे मॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: लोगों को जानने से अच्छा है खुद को जानने की कोशिश करो। दोस्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को पहचानो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। यस, जिंदगी यही कहती है कि हम लोग अपने आसपास हर चीज में कमी, दोष और सब चीजें ढूंढते रहते हैं, बट जो खुद नहीं देख पाते खुद में, अगर हम खुद में जान के देखते हैं और खुद से बात करते हैं तो हमें पता चलता है हम सब में कमी है, बट हम सब लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को पहचानिए और उसी को कुछ चेंज करके एक नए रूप में जीने की शुरुआत करिए।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किसमें कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती, हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए। मिर्च हो या नमक, हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो एक लिमिट तक होना चाहिए। इंपेशेंट कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए, आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा, वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंपेशेंट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। एट द सेम टाइम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनके साथ में किस तरह से सर्वाइव करना है, इनके साथ में जिंदगी जीना किस तरह से सीखना है, ये हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। इतनी सारी बीमारियां आई, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनके साथ में हम कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं, अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं, प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे, रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक

छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सोल्यूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता और लोगों ने चेक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें क्या, टेंशन में आ गए वो, पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। अब एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा और उसके बाद में उन्होंने यही किया, उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी। अब वो जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो लेकिन फिर भी फ्रेश है और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं, सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंध के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खाके और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी। और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से, वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए दुनिया को देखिए जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर, इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो। और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी। और ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है, जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना वो भी उस समय पर जाते ही सफर हो जाएगा, यकीन मानिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी बारे में, मंजिल और सफर में क्या डिफरेंस है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली, ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सकें। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई मीन यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट मी मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया, आगे का प्रोसेस चलिए ठीक है इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है, मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग हैं, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया, क्या मुझे मेरी मंजिल मिल गई? नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है। वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं। तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें, होता ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूं कम से कम, यहां तक पहुंचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं, हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी BMW का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की

पूरी करने की कोशिश करते हैं और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है, सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है, सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं हम। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है, सफर वहां पर भी है। रास्तों की तरह जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है, बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा आना खत्म हो जाता है, आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें, आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे एसयूवी चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में है, हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड, जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी ना किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की। जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ, आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो।
1: जीवन में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत ऑफ कोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसका फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को यह टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल कट सके। और यह सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदाने लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही हैं, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा। खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी। जब उनकी माँ लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़कर के दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़कर के कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती हैं। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें। तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है घर में ऐसा होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी, चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से।
तो टेक्निकली तो यहाँ पर दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर इस चीज को जज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

0: रेडियो।
1: आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।

0: Walk Talk Radio.
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है, ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना, भरोसे पर कायम रहना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।
0: Walk down.

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था, अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे हैं। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं, हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही ये सुना वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते, मेरा बर्थडे है आज। और उसके बाद में दोस्तों रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो। तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए वजीर के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे

वो भी हैरान, उन्होंने कहा, ये क्या है, तुमको पता है ना कि मैंने तुमको फांसी दी है? वजीर से उन्होंने पूछा, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम के 6 बजे का मुकर्रर किया, और इस तरह से मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। अगर आप मुझे ये वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये सेलिब्रेशन कैसे कर पाता? फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास आज शाम तक का वक्त है, और मैं ये क्यों जाया करूं, इसको रोने में बिता दूं मैं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। वजीर ने कहा, तो ये सुनकर के राजा ने एकदम से वजीर को गले लगा लिया, कहा कि ये कमाल की बात बोली तुमने, मोटिवेट कर दिया। मतलब जिस इंसान को वक्त की कदर है, वो जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसको मौत कैसे दी जा सकती है? ये तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है। तुम्हें जीने का पूरा हक है, और तुम्हारी बातों ने हमारा न सिर्फ दिल खुश किया है, बल्कि हमको एक नई सीख दी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। हमने तुमको मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसके बाद में भी तुम परेशान नहीं हुए। तुम्हारी फांसी की सजा माफ, राजा ने कहा। वजीर खुश, रिश्तेदार खुश, दोस्त खुश, फिर से जश्न, और अब रियल जश्न शुरू हो गया, क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है, उसका पूरा सदुपयोग करें। जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको, एंजॉय करके। वैसे ही खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो। आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता, और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा, उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है, तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब? वो होता है ना, जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें, या तो उसके साथ में, या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए, क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं अगर हमारा काम खराब हो जाए तो इतना बुरा लगता है कि हम सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बस यही तो वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने काम पर कंसिस्टेंट रहें तो हम और हमारी कामयाबी कहीं नहीं अटकती। तो बैलेंस्ड रहिए और सुकून में रहिए।

0: Walk Talk Radio.
1: घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हाँ, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
0: Walk Talk Radio.
2: Yeah. Be cool, Ross, baby. Lost in your love.

यार बैठे नाड़ दिंदा नहीं टेंशन मैं कोई परी महफिल च तेरा ही ख्याल लेंदे आ।

जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है, बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बस इसको सीखने की जरूरत है।

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना, तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

0: रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दे। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।
1: मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं अंडे शंडे खाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक पे आता।

जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। Walk Talk Radio.

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वक्त

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती हैं गलतियाँ। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

पता है, बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूफ कर पाएंगे। याद रखें कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

0: दोस्तों, यदि अपने सपनों को पूरा करते हुए आप कहीं इस उम्मीद में हैं कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला या आपका कोई खास अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके ही सपनों को पूरा करने में लग जाए, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। तो अपने गोल्स के लिए किसी और के भरोसे न रहें, क्योंकि आपके सक्सेस और आपके फेलियर के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: रेडियो।
1: नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप क्या बन सकते हैं ये आपकी मेहनत तय करती है। तो उठिए, मेहनत करिए और अपने एम को पाने में लग जाइए।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे ये दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा, तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा। डर से मत डरो यार, कुछ अलग करो और जिंदगी में कुछ बड़ा करो। इस डर को हरा दो और सब हासिल कर लो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटियाल हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
0: Walk Talk. Walk Talk Radio.
2: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो.
4: वॉक टॉक रेडियो.

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला राजा। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानी आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत

सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दें, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेड रिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, रोना आ रहा था। हाथ से चीज फिसल गई, आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें, तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता इसलिए वो चीज नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण कब पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है। याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है उसे हैंडल करना है तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई, बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटियाल हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, शो चल रहा है कहानी वाला। और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहां वहां हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं एक कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी, किसान की घड़ी की कहानी, सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को वो घड़ी मिली थी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी उसके पापा ने, वो खो गई। और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, स्कोटी का हर कोना कोना छान मारा लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहां बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढने। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगे, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंचकर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगे जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। 2 मिनट रुककर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्र चित्त वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वे टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं? अरे
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
2: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
1: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

कभी कभी कुछ बातें जो किस्से कहानियों में नहीं समझ आती हैं, वो शेर शायरी कविताएं समझा देती हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किस्से कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं, उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया।

पीएलएफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मणिअप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कॉम्पिटिशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है एक ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में है अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है वॉक टॉक रेडियो, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: फ्रेंड्स, इफ यू आर गेटिंग स्केयर्ड एवरी टाइम व्हाइल टेकिंग अ स्टेप, यू विल नेवर बी एबल टू टेक दैट स्टेप। द ओनली थिंग व्हिच इज होल्डिंग यू बैक is that the scenario which you've created in your mind that I can't do it, which stops you. I would advise you, don't be your enemy. Just take that step forward, because as you move in your life, whatever the problems comes in, solutions are also there. It's only courage, determination and hardship which is needed. There is no easy path for everyone or anyone. It is the journey which has to be there. And the steps which has to be taken up. So take that step.
3: Walk Talk

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद

0: की होगी ना, कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुँचते हैं, उस स्टेज पर पहुँचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
1: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, और कहानियां सुनाना मेरा काम है, ये तो आप जानते ही हैं। आप जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नजर हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने बोला, पापा आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओ 500 रुपए? तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं, बस जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया, भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई, उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर गुस्सा हो गया। बोले, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब हैं। ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए। ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे, और काम मत करना कम से कम उसे एक घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे। हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है। हमारे पास अपने फैमिली, हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम? सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ, बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए। वॉक टॉक रेडियो पर ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: जब भी आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा ठहर जाना, एक लंबी सी गहरी सांस तुम लेना, अपने अच्छे से अच्छे वक्त को उस वक्त तुम याद करना, अपनी मंजिल को तुम याद करना, खुद से वादा तुमने जो किया है उस वादे पर ध्यान करना। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, बस इरादे पक्के होने चाहिए। इसलिए जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा खुद के बारे में जरूर सोचिएगा।
1: कपड़े तो पहन ले।
2: दादी मिल गई से।
3: मतलब ये उन लोगों में से है।
1: कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
2: लड़के ना लड़की वगैरह चल।

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग, इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखे चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल ये हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां पर वो चिकन बनाते थे वहां रुकता था वो उनका चिकन

के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका आया, एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मना कर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी ईजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे, और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए, तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 रिजेक्शंस झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई, तब मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था। कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है, आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंटकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंटकी फ्राइड चिकन की। केंटकी को KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

नशीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत थका, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती झपकों में अपनों को, बंद कमरों में बैठा के देता हूँ गर्मों को, कुछ शर्तों पे रहना होता लड़कों।

उम्मीद रखू तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता। काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता। काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ में।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: for a better life. VocDoc, VocDoc, tune in for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Mock Duck Radio, tune in for a better life.

0: तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाले एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गांव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री जी जिद्दी थी कि उन्हें पढ़ना है, तो उन्होंने घर पे खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। अपनी एक कजन सिस्टर जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, उनसे बुक्स लेके बछेंद्री घर पे खुद से पढ़ाई करती थी। उनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने और अपनी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए वो 5-5 रुपए के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके गांव में उनके जानने वालों का कुछ भी नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिली। कोई बताने वाला तक नहीं था कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए, और उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था। बछेंद्री जी भी बढ़ रही थी डॉक्टर बनने की तरफ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनका इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। वो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स चैंपियन थी, और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया, और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एमए बीएड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास, और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बचेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थीं और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग उन्हें ताने सुनाने लगे। पिताजी की तरफ से उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पसंद था उनका ऐसे पहाड़ों पे जॉगिंग जाना, लोगों के ताने सुनना। इसलिए कोई ये ना बोले कि बछेंद्री टाइम वेस्ट कर रही है, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ चुनके ले आती थी। इससे दोनों काम हो जाते थे, उनकी प्रैक्टिस भी और घर का काम भी। बछेंद्री काफी जिद्दी थी अपने गोल्स के लिए। जैसे उन्हें पढ़ाई पूरी करनी थी वो उनका पहला गोल था, वो पूरा करके दिखाया। फिर उन्हें एवरेस्ट पार करना था, वो भी पूरी लगन के साथ कर रही थी। लाइफ में ना आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चली जाती है। जैसे ही आप उसे जाने देते हो और फोकस शिफ्ट करते हो तो वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बछेंद्री के साथ। जैसे ही प्रैक्टिस का थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, उनको आया टाटा से जॉब ऑफर। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उनके छोटे से गांव में ऐसा ऑफर आना, वो भी किसी लड़की के लिए, बहुत ही सम्मान की बात थी। गांव की तरफ से जो सोशल प्रेशर पड़ रहा था उस पे रोक लग गई थी। फिर उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग सुनी। निकल पड़ी बछेंद्री एवरेस्ट के सफर पे। चढ़ते हुए भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ का एक एवरेस्ट पार कर चुकी थी, पढ़ाई करके, जॉब करके। तो इस एवरेस्ट को पार करने के लिए उनमें पूरी क्षमता थी। एवरेस्ट चढ़ते समय एक बार आधी रात को उन्हें एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे दब गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपनी साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था ये सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के हर उस सिटीजन के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, उन सब के लिए एक मिसाल बनी बछेंद्री पाल। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हम हमेशा उपवास रखते हैं खाने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स मत करिए, अपने मन को भी करिए। अपने दिमाग से जो आपके बेकार थॉट्स हैं, उनको भी निकालिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

तुझ को जो तू अब समा गई है, आखिर दीवानी तू है मगन हूँ मैं भी इसमें शामिल, दिया है सब कुछ पर कर ना पाया कुछ भी हासिल, ना हो कुछ टचवुड वो भी जाए तो ठहरे कातिल, था मेरा सब कुछ अब आंसू।

बातों से डरे, उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही। बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरे

कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे ना ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट

मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं, तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतनी प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहाँ मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा के इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गई। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा वहाँ 6th पोजीशन पे आई। जाहिर सी बात है वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा 6th आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई, क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर 6th आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो, तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। उस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी
और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड लाके दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ले, पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ले और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल, एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा, क्योंकि जो भी हो कर्म हमेशा लौट कर आता है। और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे मॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: लोगों को जानने से अच्छा है खुद को जानने की कोशिश करो। दोस्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को पहचानो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। यस, जिंदगी यही कहती है कि हम लोग अपने आसपास हर चीज में कमी, दोष और सब चीजें ढूंढते रहते हैं, बट जो खुद नहीं देख पाते खुद में, अगर हम खुद में जान के देखते हैं और खुद से बात करते हैं तो हमें पता चलता है हम सब में कमी है, बट हम सब लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को पहचानिए और उसी को कुछ चेंज करके एक नए रूप में जीने की शुरुआत करिए।

0: Walk Talk Radio।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: Walk Talk Radio।
2: Mm-hmm.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल, कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किसमें कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती, हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए, मिर्च हो या नमक। हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो एक लिमिट तक होना चाहिए। इंपेशेंट कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए, आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा, वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंपेशेंट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। एट द सेम टाइम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनके साथ में किस तरह से सर्वाइव करना है, इनके साथ में जिंदगी जीना किस तरह से सीखना है, ये हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। इतनी सारी बीमारियां आई, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनके साथ में हम कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं, अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं, प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे, रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं, उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं, तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं, उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सोल्यूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते, और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती, लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते, वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं, तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता, और लोगों ने चक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें क्या, टेंशन में आ गए वो, पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। अब एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद में उन्होंने यही किया, उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी।
अब वो जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं, सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंध के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खा के, और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए, ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी, और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से, वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए, दुनिया को देखिए, जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर। इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो, और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो, और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी। और ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है? जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना, वो भी उस समय पर जाते ही सफर हो जाएगा, यकीन मानिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी बारे में, मंजिल और सफर में क्या डिफरेंस है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सकें। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई मीन यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट मी मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया। आगे का प्रोसेस चलिए ठीक है इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है, मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग है, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया, क्या मुझे मेरी मंजिल मिल गई? नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है। वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं। तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें, होता ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूं कम से कम, यहां तक पहुंचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं, हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी BMW का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की या पूरी करने की कोशिश करते हैं, और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है, सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है, सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है सफर वहां पर भी है।
रास्तों की तरह, जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है, बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा ना खत्म हो जाता है, आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें, आई मीन आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे एसयूवी चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में है, हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड, जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी ना किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की? जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ, आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्टे ट्यून्ड।

जीवन में कितने भी परेशानियाँ क्यों ना आए, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत ऑफ कोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसका फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को यह टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल कट सके। और यह सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहां पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदाने लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही हैं, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा। खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी। जब उनकी माँ लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माँ ने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ करके कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती हैं। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें। तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है, घर में ऐसा होता है जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो टेक्निकली तो यहां पर
दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर इस चीज को जज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

0: रेडियो।
1: आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।

0: Walk Talk Radio.
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है। ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना। भरोसे पर कायम रहना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।
0: Walk down.

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, ये वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था। अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं, हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही सुना वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते, मेरा बर्थडे है आज। और उसके बाद में दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो। तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए

अपने में बिता दूं मैं। मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। वजीर ने कहा तो यह सुनकर के राजा ने एकदम से वजीर को गले लगा लिया। कहा कि ये कमाल की बात बोली तुमने, मोटिवेट कर दिया। मतलब जिस इंसान को वक्त की कदर है वो जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसको मौत कैसे दी जा सकती है? ये तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है। तुम्हें जीने का पूरा हक है और तुम्हारी बातों ने हमारा न सिर्फ दिल खुश किया है बल्कि हमको एक नई सीख दी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। हमने तुमको मौत की सजा सुनाई लेकिन उसके बाद में भी तुम परेशान नहीं हुए। तुम्हारी फांसी की सजा माफ। राजा ने कहा, वजीर खुश, रिश्तेदार खुश, दोस्त खुश, फिर से जश्न, और अब रियल जश्न शुरू हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है उसका पूरा सदुपयोग करें। जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको एंजॉय करके। वैसे खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो। आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब? वो होता है ना जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें, या तो उसके साथ में या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए। क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं अगर हमारा काम खराब हो जाए तो इतना बुरा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बस यही तो वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने काम पर कंसिस्टेंट रहें तो हम और हमारी कामयाबी कहीं नहीं अटकती। तो बैलेंस्ड रहिए और सुकून में रहिए।

0: घायल तो यहां पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हां, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
1: Walk Talk Radio.
2: Yeah, be cool, Ross, baby. Lost in your love.

यार बैठे नाड़ दिंदा नहीं टेंशन मैं कोई परी महफिल च तेरा ही ख्याल लेंदे आ।

0: जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है बस इसको सीखने की जरूरत है।
1: वक्त आ

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना, तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

0: रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए। और देखिए, जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
0: वक्त

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
1: रेडियो। हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दे। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं

0: रेडियो।
1: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें।

कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: Radio.
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती है गलतियां। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

रेडियो। उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूफ कर पाएंगे। याद रखें कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: योर फर्स्ट वर्कआउट विल बी बैड, योर फर्स्ट पॉडकास्ट विल बी बैड, योर फर्स्ट स्पीच विल बी बैड, योर फर्स्ट वीडियो विल बी बैड, योर फर्स्ट एनीथिंग विल बी बैड, बट यू कांट मेक इट 100 विदाउट मेकिंग योर फर्स्ट। सो पुट एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, जस्ट कीप डूइंग इट विदाउट द फियर ऑफ फेलियर।

0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो। मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: वॉक टॉक।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप किसी को अपना दुख बताओगे तो सामने वाला आपको अपना 4 गुना दुख बताएगा। इसीलिए किसी को अपने दुख बताने से बेटर है आप उन्हें खुद ब खुद सॉल्व करें, तभी आप खुश रह पाओगे।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दोस्तों, हर दिन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ दूं। करियर में आगे बढ़ते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हमें दो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और तब ये मिक्स इमोशंस वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसकी खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की कि दो अच्छे अवसर हमें मिले, दुख इस बात का कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूज होने के बजाय खुद पर भरोसा करके एक को चुन लो, क्योंकि दोस्त ऑप्शंस आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों आपकी काबिलियत से ही बनते हैं।
2: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ वॉक टॉक रेडियो।
2: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
1: हमेशा रिश्तों की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अपनों के साथ गहरा रिश्ता। उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बुरे से बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं। यही है जो वाकई हमें अपना समझते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसे रिश्तों की कद्र करना, वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं होती कि सही कौन है, गलत कौन है, अपने कौन है, पराए कौन है। जिनको हम अपना समझते हैं वो पराए निकलते हैं, जिनको पराया समझते हैं वो कभी कभी अपना निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों पर विश्वास करना और उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio. जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दूसरों की नकल कब तक करते रहोगे, दूसरों का हाथ पकड़कर आखिर कब तक चलते रहोगे। अगर लाइफ में खुद का कुछ करना है ना, तो खुद का एक रास्ता बनाए कि तुम्हें चलना कहाँ है और तुम्हारी मंजिल कहाँ है।

0: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
6: वॉक टॉक रेडियो,

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप क्या बन सकते हैं ये आपकी मेहनत तय करती है। तो उठिए, मेहनत करिए और अपने एम को पाने में लग जाइए।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ये है वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो,
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहां टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
3: Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: ये है Walk Talk Radio.
2: Walk Talk Radio.
3: दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ जरूर होना तय है। अब वो अच्छा होगा या बुरा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन ये सोचकर हम आगे बढ़ना बंद तो नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ते जाइए, क्या पता बुरे दौर में भी क्या ऐसा हो जाए जो आपको कुछ अच्छे की तरफ मोड़ दे। दौर बुरा हो या अच्छा, हौसला मत हारिए। वक्त ही तो है, एक दिन सबका बदलता है।
0: Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं. तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें. ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो.

0: वॉक टॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: पुराने दोस्त और स्कूल के दिन काफी प्रीशियस होते हैं हमारी जिंदगी में। स्कूल जहाँ से हमारे नए सफर की शुरुआत होती है, नए दोस्तों से मिलना, जहाँ हम

ढेर सारी मस्तियां करते हैं, जहां हम हंसते भी हैं, खेलते भी हैं और सीखते भी हैं। लाइफ में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें आज भी पता है हर सब्जेक्ट के टीचर का नाम, कौन सा टीचर हमारा फेवरेट था और किससे हमें सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी, किस किस तरह से गेम्स हम खेलते थे, हमारे स्कूल के दोस्त, वो सारी चीज़ें हमें हमेशा जो है याद रहती हैं। जिंदगी में सब कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन स्कूल के वो पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ वॉक टॉक रेडियो
2: वॉक टॉक रेडियो। आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
3: वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

0: रेडियो।
1: जैसे को तैसा, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी, लेकिन जरा खुद सोचो, अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करें तो हम में और उस इंसान में जिसने हमारे साथ गलत किया है क्या फर्क रह जाएगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, माफ करना सीखो। एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है माफ करना, और वो भी तब जब वो खुद सही और सामने वाला गलत हो। तो जैसे के साथ तैसा नहीं, बल्कि उसे माफ करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है, but then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो, हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि

जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से खुद स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से जो आपका खुद पे होगा। Walk Talk Radio.

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक। मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ। जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ। तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स तुम अपना पेट भर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है। क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा। मेरी टीम में भी अगर आप देखें देर आर 80-90% फीमेल्स इन माई टीम। और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक
1: जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।